आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि। तदनुसार 8 जुलाई सन 2026 ईस्वी प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। इसकी संरचना बड़ी ही अद्भुत है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन इस पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन तभी संभव है जब हम इस शरीर की क्षमताओं का सही उपयोग कर सकें। 84 लाख योनियां हैं, उनमें केवल मनुष्य को ही वो ज्ञान और विवेक प्राप्त है जिसके कारण वो अपने करणीय और अकरणीय कर्मों पर विचार कर सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसमें और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितने भी दूसरे जीव हैं वो निद्रा, भय, मैथुन और आहार में लिप्त हैं। यदि मानव भी यही कर रहा है तो उसमें और दूसरे जीव में अंतर ही क्या है? दूसरे जीवों को ये अवसर तो मिला ही नहीं, ये तो केवल मनुष्य को ही शरीर के रूप में मिला है, एक साधन मिला है जिसके द्वारा वो केवल इस जन्म ही नहीं बल्कि अपने अगले जन्म को भी सुंदर बना सकता है, शांति और आनंद पा सकता है। उसे निरंतर ये ध्यान रखना है कि ये शरीर साध्य नहीं है, साधन है। लेकिन अक्सर हम भौतिकता के मकड़ जाल में उलझे हुए अपने शरीर को ही साध्य मान लेते हैं, इसकी सुंदरता के लिए खर्च करते हैं, इसे भरा रखने के लिए खर्च करते हैं, इसे जितना से ज्यादा सुख प्राप्त हो सके इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। साधन के रूप में अगर हम उपयोग करें अपने शरीर का तो ये हमें भवसागर से मुक्ति दिला सकता है। तुलसीदास जी ने कहा, शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी ये शरीर एक साधन है, ये एक मोक्ष का द्वार है। माँ के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तो अपनी बंद मुट्ठी में बहुत कुछ लेकर आता है और फिर जब बड़ा होता है, बहुत सारे सुकर्म को कर्म करता है, अपना सब कुछ यहीं छोड़कर खुले हाथों से इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन एक वस्तु वो अपने साथ ले जाता है, वो होता है

0: उसका संस्कार, अच्छे या बुरे संस्कार उसका प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में उसके साथ जाते हैं। ये संसार एक बाजार है, मनुष्य तो खरीद बिक्री करने वाला एक तुच्छ प्राणी है। कुछ लोग सत्कर्मों के द्वारा लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बुरे कर्मों द्वारा इस मानव जीवन रूपी मूलधन को ही खो बैठते हैं। जिसने इस संसार रूपी बाजार में आकर भी अच्छी खरीदारी नहीं की, अर्थात सत्कर्मों के द्वारा अच्छे संस्कार नहीं बनाए, उसके लिए दूसरी हाट कहाँ है? पता नहीं ये मानव जीवन फिर मिले या ना मिले। इसीलिए कबीर और उनकी तरह जितने भी संत कवि हुए, उन सब ने संसार रूपी हाट से सत्कर्मों के द्वारा अच्छी खरीदारी करने की बात बार बार कही है। अच्छे संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं जो इस संसार में रहते समय हमारा साथ देते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ अच्छा सिखा जाते हैं, उनके लिए कुछ भलाई का काम करते हैं। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो आगे की दुनिया में भी ये संस्कार हमारा साथ देते हैं, तो क्यों ना अपने संस्कारों को बेहतर बनाने की दिशा में सोचा जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है बरसाती कद्दू की आधुनिक खेती। जानकारी दे रहे हैं शांतनु कुमार मिश्र।
2: आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जा। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमरा लोकन तरकारी खेती कऽ चिक्कन आमदनी कऽ सकै छी, मुदा ताहू में जो सजमनि के खेती करै छी, जकरा हमरा लोकन कद्दू लौकी सेहो कहै छी, तऽ व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ लाभ होइत अछि। कारण बाजार में एकर मांग सदत बनल रहैत अछि आ स्वास्थ्यक दृष्टि से एहि में कतेको प्रकारक पोषक तत्व पाएल जाइत अछि। तैं हमरा लोकनि सजमनि के खेती कऽ कऽ नीक आमदनी कमायब, जाहि लेल किछु मुख्य गप होइत अछि जाहि पर ध्यान देबाक चाही, आ किछु सामान्य गप होइत अछि ताहू पर ध्यान दी। जेना मुख्य गप ई होइत अछि जे सजमनि के सबसे पहिने बेर पर ध्यान दी जे ई कखुनका बेरक सजमनि अछि, जेना बरसाती होइत अछि, गर्मा होइत अछि। तऽ एखन हम बरसाती सजमनि के खेती के प्रसंग में चर्चा कऽ रहल छी। ई ध्यान रहे जे बरसाती सजमनि के सदत उन्नत प्रभेद लगाबी, जाहि मे पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल, अरका बहार, आजाद हरित इत्यादि अबैत अछि। संकर प्रभेद में अबैत अछि पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, NDBGH4, पंत शंकर लौकी 1, पंत शंकर लौकी 3, नरेंद्र शंकर लौकी 4 इत्यादि। एकरा रोपनी के बेर बरसाती के जून से जुलाई बेर अछि, जाहि बेर मे हमरा लोकन के बिया दर 304 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगैत अछि। बिया के बाउग करबाक दूरी पर सेहो ध्यान देबाक चाही, जे 2×2 मीटर रखबाक चाही। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, खाद उर्वरक के व्यवहार करबा से पहिने माटिक जांच करा लेबाक चाही, तखन खाद उर्वरकक व्यवहार करबाक चाही, जाहिसँ बेसी लाभ होइत अछि आ अर्थक बचत सेहो होइत अछि। संग संग खाद उर्वरकक मात्रा पर सेहो ध्यान देबाक चाही।

0: खाद उर्वरक के रूप में कंपोस्ट 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्फुट 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के व्यवहार कर सकैत छी। एहि प्रकारे जो नीक जकाँ खेती करब तो एकर उपजा 150 सँ लऽ कऽ 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि होयत। तो स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनि के नीक जकाँ सजमनि के खेती करबाक चाही। एहि संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल, चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय था बरसाती कद्दू की आधुनिक खेती। जानकारी दे रहे थे शंकर कुमार चौधरी।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय है ब्रेन ट्यूमर, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एजाज आलम, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर एजाज आलम साहब, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: ये ब्रेन ट्यूमर है क्या?
3: ब्रेन ट्यूमर एबनॉर्मल टिश्यूज का एक कलेक्शन है, जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसके बिना जो कुछ एबनॉर्मल कलेक्शन बन के गांठ जैसा बन जाता है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, आम भाषा में अगर हम बोले तो।
2: क्या ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकने वाली बीमारी है?
3: जी, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जब ये मस्तिष्क के अंदर होता है तो उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं।
2: इसके क्या कारण है?
3: इसका एग्जैक्ट कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी, जिसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल, जैसे केमिकल या रेडिएशन एक्सपोजर, जीन म्यूटेशन, प्लस जो आपका लाइफ स्टाइल है, अगर किसी को तंबाकू का सेवन है या अल्कोहल का सेवन है, ये सब चीज़ें एक रिस्क फैक्टर होती है जिससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है।
2: क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग में जब ये बढ़ाव होता है गांठ का, तो क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं?
3: जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। कुछ हिस्सा होता है जिससे हम बात करते हैं, कुछ हिस्सा होता है जिससे हमारा याददाश्त कंट्रोल होता है, हाथ पैर का अलग सेंटर है, देखने का अलग सेंटर है। तो जिस भी हिस्सा पे ब्रेन ट्यूमर अटैक करता है वहाँ का सिम्टम आता है। बट कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, मिर्गी का दौरा आना, आँख की रोशनी में थोड़ी कमी आना, ये सब एक कॉमन सिम्टम होते हैं जो ब्रेन में ट्यूमर होने का एक संकेत देता है।
2: क्या लकवे वाले लक्षण भी आते हैं?
3: जी बिल्कुल, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ से हाथ पैर का पावर कंट्रोल होता है तो उससे हमारे पैरालिसिस या लकवा भी हो सकता है।
2: क्या बहुत दिनों तक रहने वाला जो सर दर्द है, क्या उसकी जड़ में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है?
3: जी, बहुत सारे सर दर्द की बीमारी जो कई सालों से है, या फिर ऐसा सर दर्द जिसके साथ बहुत तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी, देखने में दिक्कत आता है, ये एक ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है।
2: कौन से वैसे लक्षण हैं जिस पर आदमी को एकदम से सचेत हो जाना चाहिए?
3: मिर्गी का दौरा आना, अचानक से आँख की रोशनी का चला जाना, आवाज में लड़खड़ाहट आना, याददाश्त में कमी होना, या फिर खाने पीने निगलने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपका जो ब्रेन का नर्व है वो सब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें जल्दी सचेत हो जाना चाहिए।
2: आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं?
3: दो प्रकार हम जो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, एक बिनाइन होते हैं जिसको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट जिसको आम भाषा में कैंसर भी बोलते हैं।

0: से तो ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, 100 से ज़्यादा टाइप हैं, लेकिन आम भाषा में जानना ये ज़रूरी होता है कि ये बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है।
1: बिना कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है वो और कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है, क्या उनके लक्षण में भी फ़र्क होता है?
0: लक्षण में फ़र्क होता है, जो कैंसर वाला है उसमें जो लक्षण होता है वो बहुत तेज़ी से आते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, और जो बिना कैंसर वाला बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से सर में दर्द होना, आँख की रोशनी कमज़ोर होना, तो उसमें जो सिम्टम का ड्यूरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, काफ़ी लंबा वक्त लेता है।
1: इसकी जांच कैसे की जाती है?
0: इसकी जांच जैसे कोई मरीज हम लोगों के पास आता है तो उनसे बीमारी के लक्षण पूछने के बाद फिर हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं मरीज़ के ऊपर कि हाथ पैर की ताकत कैसी है, आँख की रोशनी कैसी है, वो सब करने के बाद अगर हम लोग को डाउट होता है कि नहीं दिमाग में ट्यूमर के लक्षण सब आ रहे हैं तो इमेजिंग मॉडलिटीज़ पर जाया जाता है, कॉमन आर, MRI, CT स्कैन, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि दिमाग में गांठ है या नहीं है।
1: हर गांठ कैंसर नहीं होता है लेकिन कैंसर हो भी सकता है।
0: जी, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं होते हैं और जिसका अच्छे से इलाज किया जाए तो वो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो ये ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कैंसर हो गया अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये गलत धारणा है।
1: इलाज के क्या तरीके हैं?
0: पहला इलाज होता है वो ऑपरेशन होता है। 90% से ज़्यादा ट्यूमर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन करके निकालना होता है। कुछ 1-2% ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे पिट्यूटरी या फंक्शनल ट्यूमर जो दवा से भी काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर मैलिग्नेंसी आती है जैसे कैंसर आते हैं तो फिर रेडिएशन दिया जाता है, रेडियोथेरेपी प्लस उसकी कुछ दवाइयां भी आती हैं जिनको कीमोथेरेपी वगैरह कहते हैं।
1: ब्रेन ट्यूमर को लेकर के अगर सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आम लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है, आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब आजकल न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस लेवल पर जा चुका है, अच्छी अच्छी मशीनें, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप आ चुके हैं, सर्जरी आसान हो गई है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और चूंकि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो ब्रेन ट्यूमर वक्त के साथ बढ़ेगा और फिर वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो ऑपरेशन अगर कोई डॉक्टर सलाह देते हैं और ये बताते हैं कि ऑपरेशन से आपकी बीमारी ठीक होने के अच्छे चांसेस हैं तो हमेशा ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। इसमें दवा का ज़्यादा ट्रायल लेके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर एजाज आलम साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा, यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देश का। आइए सुनिए भजन, स्वर है समूह स्वर है।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गणपति वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं हरिहरन के स्वर में।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में।

0: इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का, मुख्य स्वर है रविंद्र साठे का।
1: एपिसोड 22।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 से। शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन के 11 बजे। इससे पहले आप सुनेंगे 10 बजे फिल्म संगीत और 10:30 पर समय होगा लोक गीत का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुना करते हैं 11:30 से।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। देशभक्ति गीत का समय होगा 1:10 पर। 1:15 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रोजगार सूचना आप सुना करते हैं 2:10 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 2:30 से। सुगम संगीत आप सुनेंगे 2:03। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम संध्या 5:00। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:10 से। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का समय होगा 7:00।

0: फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंहहार का समय होगा 8:15 पर। चर्चा का विषय है, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी का समय होगा 10:00। और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग आप सुनेंगे 10:30 से। ये था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत में फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तरी आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध, समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवातीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयर

समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार
1: और साथ ही साथ कायम नेहर का भी नमस्कार।
0: और कार्यक्रम के शुरुआत सुविचार सा।
1: यह कभी मत कहना कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप अनंत हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा।
0: निश्चित गप छे, अगर अहाँ कोनो चीज सोच ले छी कि हम ई क लेब या हमरा बुते ई संभव अछि तो ब्रह्मांड भर के पूरा शक्ति लग जाते अहाँ को काज के सफल करे के दिशा में और अहाँ के दिमाग सेहो बेर बेर चलो लगते कि वो काज केना सफल है तो इस दिशा में की कैल जाए केना कैल जाए। पूरा के पूरा जे तंत्र छे से अहाँ के लगत कि वो काज क लेवाक तै दुआरे सोच से लोग सफल होते और सोचे से लोग असफल होते। अगर अहाँ पैग पैग व्यक्तित्व के अगर जीवनी के पढ़वन जीवनी के देखवन तो देखवन एक समय में वो साधारण छलत मुदा साधारण छलत सोच हुनकर असाधारण रहन और आई वो सफल भ चुकल छथि और हमर अहाँ के प्रेरणा के स्रोत छथि। तै दुआरे कखनो ई नहीं सोचलि कि काज हमरा बुते नहीं हैत, काज करबाक अछि और आगू बढ़बाक अछि और सोचैत सोचैत एतेक नहीं सोची कि काज शुरुए नहीं कऽ पाबी। तै दुआरे काज करी, धीरे धीरे ओहिमे बहुत रास दिक्कत आयत मुदा अगर अहाँके किछु निश्चय दृढ़ अछि तऽ अहाँ सफल हेबे करब और जे सफल होइ छथि से इतिहासमे सेहो नाम करै छथि। और कार्यक्रममे सेहो आइके दिन इतिहासमे क्या महत्वपूर्ण अछि ताहिपर हमसब चर्चा कऽ ली।
1: बात करें आज के दिन 8 जुलाई को 1497 में वास्को डिगामा ने पुर्तगाल से भारत की अपनी पहली ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र का पहला सार्वजनिक पठन किया गया। आज ही के दिन 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगलपन बिजली परियोजना की सबसे बड़ी नहर का उद्घाटन किया। आज ही के दिन 1972 में पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सौरभ गांगुली का जन्म हुआ।
0: ती अखन हमसब अहाँके जानकारी प्राप्त करैत रही। आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि और कार्यक्रम में आगू बढ़े छी, अपने सबके मैथिली गीत सुनबै छी।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये मैथिली सुगम संगीत बिल्कुल पसंद आया होगा और आकाशवाणी दरभंगा से हम बहुत सारी चीज़ों को समेट कर लेकर आते हैं अपने श्रोताओं के लिए और कोशिश करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे। और समय के साथ हमें चलते रहना चाहिए और समय के साथ हर वो चीज़ को हमें करना एक आदत हमारे जीवन में बना लेना चाहिए और हम भी कोशिश करते हैं कि समय के साथ आप तक आपके रेडियो पर हर वो चीज़ को भेजें। अब वक्त हो चुका है हालचाल का, हालचाल प्रस्तुत करेंगे आशीष कुमार सिंह।
1: धन्यवाद कयाम। आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। सिमरी बख्तियारपुर में अबैवला श्रावणी मेला के लेल प्रशासनिक तैयारी तेज भ गेल अछि। अधिकारी सब मेला स्थल पर पहुँच क के साफ सफाई, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण पर चर्चा कयलथि। सहरसा पुलिस लाइन में पुलिस बल सबके प्रशिक्षण के लेल 39-39 क्षमता वाला 3 मॉडल प्रशिक्षण क्लासरूम के निर्माण करायल जा रहा है। पुलिस विभाग पुलिस बल के संख्या लगातार बढ़ रहा है। संख्या बेसी भेला के कारण पुलिसकर्मी सबके लेल प्रशिक्षण के व्यवस्था टुकड़ा में करा पड़ रहा है। जगह के कमी के कारण एकेटा प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार बहुत दिन तक चलित रहते है। व्यवस्था के कारण कठिनाई उत्पन्न भ रहा है। प्रस्तावित मॉडल ट्रेनिंग क्लासरूम में आधुनिक प्रशिक्षण आवश्यकता सबके अनुरूप सबटा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराओल जाए। मॉडल ट्रेनिंग क्लासरूम तैयार होने के बाद प्रशिक्षण के गुणवत्ता में सेहो और बेसी सुधार होयत। विद्युत विभाग अहाँ के आई 8 जुलाई के सौर बाजार के लिए बिजली आपूर्ति में बाधा के से सूचना देने छथि। जोड़ल मीटरिंग यूनिट के बदले के कारण सौर बाजार, समदा, सिलेट और अन्य क्षेत्र में दोपहरिया के 3 से 5 धरि बिजली कटल रहत। सुपौल जिला में जुलाई में पहिल बेर नीक बरखा भेल, जैसे किसान सबको उम्मीद बढ़ा चुक दिलकन है। राइत भेल बेर बरखा में 118.8 मिलीमीटर बरखा दर्ज कैल गेल, जैसे धान के रोपनी और के लेल नीक परिस्थिति बन रहल अछि। महाकवि विद्यापति के वैवाहिक वंशावली पंजीकार सब के लग प्राचीन ऐतिहासिक पंडुलिपि में सहेज के राखल छन। पंजीकार सब के पास विद्यापति के जन्म से लौकर सबटा जानकारी उपलब्ध छन। हाल में करीब 400 ब्राह्मण परिवार के वंशावली बनकर मधुबनी में तैयार कैल गेल। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के तत्वाधान में काल मंगल दिन श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में जिला स्तरीय रेड रन 2026 प्रतियोगिता आयोजित भेल। एहिमे आरएसएस साइंस कॉलेज के छात्रा नूतन कुमारी के प्रथम आ रामसेवक सिंह महिला कॉलेज डुमरा के छात्रा पुष्पा कुमारी

0: प्रदर्शन करैत दोसर स्थान प्राप्त कयलथि। अन्य छात्रा सबके प्रदर्शन सेहो नीक रहल। महिला वर्ग के 5 किलोमीटर दौड़ में छात्रा सब उत्साह के संगे भाग लेलथि। राजकीय डिग्री महाविद्यालय नावकोठी में स्नातक नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत पहिल चयन सूची में से 80 छात्र छात्रा के नामांकन काल मंगल दिन तक संपन्न भ चुकल छल। पीएम श्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 1 से लौकर 8 धरि तक के और कक्षा 6 से 12 के न्यूनतम 50 बालिका सबके आत्मरक्षा के लेल प्रशिक्षण देल जतन। हिंका लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जायत। दरभंगा में दिल्ली मोड़ स्थित निर्माणाधीन बस स्टैंड के मंगल दिन डीएम कौशल कुमार निरीक्षण कयलथि। ओ निर्माण कार्य के प्रगति के जायजा लैत अधिकारी सबके गुणवत्ता के संग काज करे के दिशा निर्देश सेहो देलथि। दरभंगा जिला में 48 जगह पर सहयोग शिविर लागल। डीएमएसपी एकर निरीक्षण सेहो कयलथि। डीएम कौशल कुमार सकरी चीनी मिल के स्थलीय निरीक्षण क के मिल परिसर के मौजूद स्थिति के जायजा लेलथि। निरीक्षण के दौरान ओ क्षेत्र विस्तार, आधारभूत संरचना और परिसर के रखरखाव के समीक्षा करैत संबंधित अधिकारी सबके आवश्यक दिशा निर्देश देलथि। चीनी मिल के क्षेत्र विस्तार से जुड़ल सबटा प्रक्रिया के प्राथमिकता के आधार पर पूरा कयल जाय, जैसे भविष्य में मिल के संचालन और विकासक लेल जरूरी आधारभूत सुविधा उपलब्ध भ सके, एहि पर डीएम जोर देलथि। दरभंगा आबि रहल स्पाइस जेट के फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारणे वापस घुरि गेल। 70 पंचायत भवन परिसर में काल्हि मंगल दिन सहयोग शिविर का आयोजन भेल। मुखिया गीता देवी के नेतृत्व में 66 आवेदन में से 52 के तुरंत समाधान क देल गेल। सुपौल से दरभंगा के बीच नबका नेशनल हाईवे बनाओल जायत। केंद्र सरकार अही के मंजूरी द दिलत। NHAI अही के DPR जल्दी बनौतत। 5 वर्ष से अटकल निधि चौक से रेलवे स्टेशन धरि बन रहल 4 लेन सड़क के वन विभाग के NOC भेट गेल। आब मधुबनी में इस सड़क के निर्माण जल्दी भ जायत। सीतामढ़ी नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के बैसार आई नगर निगम सभागार में मेयर के अध्यक्षता में हैत। बेलसंड में अग्निशमन विभाग के जागरूकता अभियान में मॉक ड्रिल क के आग से बचाव के उपाय बताओल गेल। BBOSE 10वीं के परीक्षा 30 जुलाई से शुरू भ रहल अछि। साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 84 में गोद भराई आ सखी वार्ता कार्यक्रम भेल। अही संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: हालचाल के बाद श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज़ कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो दरभंगा से सुबह 6:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 बजे दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: और अगर मौसम की गप करी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के दिस से 12 जुलाई धरि के मौसम पूर्वानुमान में उत्तर बिहार के अनेक स्थान पर 10 से 12 जुलाई के आसपास मेघ गर्जन, ब्रजपात आ तेज हवा चले के संभावना अछि।

0: में बेसीतर दिन में आकाश में हल्का से मध्यम मेघ देखल जा सकते हैं। हालांकि 10 सँ 12 जुलाई के बीच घना बादल आबि सकते हैं। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण आ पश्चिमी चंपारण जिला के अनेक स्थान पर 10 सँ 12 जुलाई के बीच नीक वर्षा होने की संभावना व्यक्त कैल गेल अछि। आन जिला में एहि अवधि में सेहो नीक वर्षा होने की संभावना ओतेक नीक नहीं अछि। हल्का वर्षा भ सकैत अछि। एक दूटा स्थान पर मध्यम वर्षा होने की सेहो संभावना व्यक्त कैल गेल अछि। एहि अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे के अनुमान अछि। और गप करी एहि अवधि के मुख्यतः पूर्वा हवा 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने के संभावना व्यक्त कैल गेल अछि। ई एखन हमसब मौसम के सेहो जानकारी प्राप्त करैत रही।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्य वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्य वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन आकाशवाणी दरभंगा से नमस्कार मिथिला के इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं मिथिला की आवाज़, जहां मिथिला के लोगों से हम रूबरू होते हैं। उनके द्वारा किए गए बातों को, कारनामों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारा कुछ ऐसा ही इरादा है और मिथिला की आवाज़ लेकर आए हैं हमारे साथ आशीष कुमार।
1: नमस्कार, मैं आशीष और अभी मेरे साथ हैं इंजीनियर पीयूष केशव। बात करें तो रिसर्च आधारित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो रिसर्च आधारित हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नमस्ते आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऑल इंडिया रेडियो का कि ये प्लेटफॉर्म आपने दिया आपके माध्यम से लोगों तक अपना विचार पहुंचाने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं आपको एक साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़रा पिछले 100-125 साल के टाइमलाइन को देखते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे बुजुर्ग जुड़े हुए होते हैं समाज में, जो देख रहे हैं क्या क्या हुआ है। तो चलिए 1920 में चलते हैं। 1920 में कहीं से किसी दूर देश से ट्रैक्टर आया और हम सब काफ़ी खुश हुए ट्रैक्टर को देख के। कुछ लोग प्रभावित भी हुए, कुछ लोग निराश भी हुए, लेकिन जो भी हुआ हो ट्रैक्टर के इर्द गिर्द एक पूरा समाज बनने लगा। हम ट्रैक्टर बनाना सीख लिए, हम ट्रैक्टर चलाना सीख लिए, हम ट्रैक्टर रिपेयर करना सीख लिए और हम सो कॉल्ड प्रगति भी करने लगे, एग्रीकल्चरल प्रगति जिसको आप कहते हैं। फिर बाकी जगह हमारा ध्यान नहीं गया और फिर कहीं दूसरे देश में कुछ और काम हो रहा था और 30-40 साल बीता। जब तक हम प्रोफेशनल बन ही चुके थे ट्रैक्टर में, तब तक में कंप्यूटर आ गया और दूसरा देश आके कहने लगा कि नहीं नहीं कंप्यूटर लो। और हम फिर बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए कंप्यूटर को देख के और धीरे धीरे हमने फिर कंप्यूटर को चलाना सीख लिया, कंप्यूटर को रिपेयर करना सीख लिया, कंप्यूटर को बनाना सीख लिया। फिर वैसे ही करके प्रोग्रामिंग की बात आ गई, सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, सॉफ्टवेयर चलाना हम माहिर हो गए। आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग माहिर हो जाते हैं, जो भी काम हम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि हम फाइटर प्लेन्स उड़ाने में तो शायद विश्व में नंबर वन हो, लेकिन हम फाइटर प्लेन्स बनाने में विश्व में नंबर वन है? हम कंप्यूटर चलाने में शायद विश्व में नंबर वन हो और भारत से बहुत दूर दूर तक सब बहुत अच्छे कंप्यूटर के विद्वान जाते हों और नौकरी करते हों, लेकिन हम क्या नया आविष्कार करने में नंबर वन है? ये हमें सोचने की जरूरत है। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों में बीज नहीं डाल रहे हैं। आप देखिए इर्द गिर्द भी, हम अपने बच्चों के पास स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से कहाँ इस बात पे चर्चा कर पाते हैं कि नया इन्वेंशन किया जा सकता है, नया ब्रेक थ्रू किया जा सकता है, ग्लोबल फर्स्ट कुछ क्रिएट किया जा सकता है? ये आज हम और आप अचानक से बात करने लगे और कल हम लोग क्रिएट कर दें, ये संभव है? नहीं संभव है। ये तब संभव है जब मैं बचपन में मुझे या आपको किसी ने कहा होता कि इस दिशा में तुम विश्व में पहला कुछ निर्माण कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आप तक मेरी भावनाएं पहुंची होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्यों ये बचपन में ही स्कूल लेवल पे ही इस तरह का बीजारोपण होना चाहिए, सीड प्लांटिंग होना चाहिए बच्चों के मन में। लेकिन ये सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, आप देखिए।

0: स्कूल्स में जहाँ तक बात कर रहे हैं, स्कूल्स में बड़ा आसान है। आप अपने आसपास के कॉलेजेस में जाइए, स्कूल के मैं शिक्षकों या प्रिंसिपल से कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास के स्कूल कॉलेजेस में जाइए, वहाँ के प्रोफेसर से आपका कनेक्शन है और उनको बुलाया करिए, उनको आमंत्रित करिए अपने स्कूल कैंपस में कि अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज पे वो कुछ बातें रखें। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। हम जनरली क्या कर रहे हैं, स्कूल में कौन विजिट कर रहा है, तो आप देखिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले या फिर थोड़ा उसके इर्द गिर्द की जो भी बातें होती हैं वैसे लोग पहुंच रहे हैं। तो वो एक आयाम है, वो ठीक है, वो जरूरी भी है कह सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू जिसको हमने नजरअंदाज करके रखा हुआ है, श्रीनिवास रामानुजन जैसे लोगों को क्रिएट करना या उस तरह का विचार हमारे बच्चों में, बच्चों के मन में डालना, इसके पीछे 2009 से ही हम लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में इन विचारों को रखते रहे कि आइए नए भारत का नया निर्माण करते हैं। और गर्व से 15-20 साल बाद, 10 साल बाद कहते हैं कि विश्व में पहली बार पूरे विश्व के लिए एक नया सॉल्यूशन क्रिएट करके दिया है और भारत ने दिया है।
1: रिसर्च की बात करते हैं तो विद्यार्थी जो हैं इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
0: देखिए, विद्यार्थी किसी भी दिशा में अलग अलग कारणों से आगे बढ़ते हैं। जैसे उसमें मुख्यतः एक कारण होता है जॉब, करियर सेटिस्फेक्शन, पैसा। तो अनफॉर्चुनेटली हमने रिसर्च में कितना ज्यादा पैसा है, कितना ज्यादा सम्मान है, इन बातों को ठीक से अपने विद्यार्थियों के बीच में रख नहीं पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे जो सफल प्रोफेसर हैं, जो सफल वैज्ञानिक हैं, उनको हम स्कूल से कनेक्ट करें। और वो किसी एक के माध्यम से नहीं हो सकता है, वो हमको, आपको, हर किसी को अपने अलग अलग तरीके से माध्यम से प्रयास करना होगा कि अच्छे सफल वैज्ञानिक किसी न किसी माध्यम से हमारे छोटे बच्चों से जुड़े और उनको बताएं रिसर्च की दुनिया कितनी पावरफुल, कितनी रोमांचकारी है और कितना ज्यादा सम्मान भी है, पैसा भी है और जो भी आप चाहते हैं वो है।
1: जी, धन्यवाद।
2: उम्मीद करते हैं ये बातचीत श्रोताओं को पसंद आई होगी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: निश्चित गप छै, खास कऽ के हमरा अहाँके ई सोचै लए अहाँके एहन अगर गप सब हुए तऽ मजबूर करैत अछि कि हम अहाँ सहीमे कोन दिशामे आगू बढ़ि रहल छै। आइ जखन पूरा देश विदेशमे स्किल डेवलपमेंटपर काज भऽ रहल अछि, नवाचारके दिशामे काज भऽ रहल अछि, तऽ हम अहाँ सेहो एहि दिशामे बढ़ी। हमर अहाँके जे एखन छोट स्तरसँ यानि कि इसकुल लेवलसँ एहि दिशामे काज हुए, बहुत नीक गप कहलत कि वैज्ञानिक बनै लए किया नहि चाहि रहल छथि बच्चा, कतौ ने कतौ आविष्कारके दिशामे हमसब किया नहि बढ़ि रहल छी, तऽ ई सोचब, ई सोचैवला गप अछि। आओर एहि दिशामे अगर हमसब सोचि लेब तऽ देश निश्चित तौर पर प्रगति करबे करत।
2: जी हाँ, बिल्कुल। और देश की प्रगति की बात अगर हम करें तो देश में कुछ नया करना तभी ज़रूरी है या नया के बारे में हम सोचते हैं, जैसा कि हमारे युवा क्रांतिकारियों ने देश के लिए सोचा, उन्होंने नया कुछ किया तो आज देश के लोग उनका नाम ले रहे हैं। तो ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसको इजाद हम करें, जिसको हम बनाएं, ताकि हमारा देश और दुनिया में नाम हो सके। उसी तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवा क्रांतिकारियों का अदम्य साहस और बलिदान इतिहास का सबसे स्वर्णीय अध्ययन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान जैसे युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश में नव जागरण की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यह केवल एक सशस्त्र विद्रोह नहीं था बल्कि एक सोची समझी वैचारिक क्रांति थी। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ देश के हर कोने में क्रांति की अलग मिसाल पेश कर दी। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए इन वीरों ने मात्र 20 से 25 वर्ष की उम्र में मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। उनके साहस का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के मन में खौफ पैदा कर दिया। श्रोताओं, आज के समय में युवा पीढ़ी का अदम्य साहस बंदूक उठाने में नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और नए विचारों को में दिखाई देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवाओं को ऊर्जा का स्रोत माना जाता था और भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना भी उन्होंने की थी कि युवाओं को जो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो हमारे युवा क्रांतिकारी रहे हों, उन्होंने जो इतिहास रचा हो, या अब के जनरेशन के जो लोग हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन का मतलब ये है कि हम जिन चीज़ों को कर रहे हैं उन चीज़ों से बहुत बदलाव होना चाहिए देश में, खुद में, समाज में। कुछ ऐसा चीज़ करें जिसका इजाद हम करते हों, लोग हमें उन चीज़ों के बारे में जाने, हमारे नाम से पहचाने, तभी हमारा देश, राष्ट्र।

0: करेगा।
1: निश्चित तौर पर, और क्रांति के बिगुल असगर आदमी अहाँके आगू बढ़ै छथि और बढ़ैत रहै छथि। अगर अहाँ आगू बढ़ैत रहब तऽ ओ अहाँ सङ्गे सङ्गे एकटा कारवाँ बनि जाइत अछि और लोक अहाँ सने जुटि जाइ छथि। ताहि दुआरे और वएह एकटा छलै एखन हमर सबके जे किछु छै, हमर सबके आजादीमे जे क्रांतिकारी युवा सब छलथि तिनकर सबके हमसब नहि बिसरि सकै छी। हुनकर सबके जे हिसाबसँ सब काज केलथि ताहि दुआरे आइ हमसब आजाद छी। तऽ एखन आब आजाद भेलाके बाद युवा सबके सेहो आब फर्ज बनि जाइत अछि कि देशके केना आगू बढ़ाबी, सही दिशामे हमसब प्रयत्न करी और प्रयत्न करब तऽ हमसब सफल हेबे करब। तऽ कार्यक्रममे सेहो हमरा सबके आगू बढ़बाक अछि।
0: जी हाँ बिल्कुल, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर आते हैं और हालचाल चर्चा मिथिला की आवाज़ और साथ ही साथ गीत संगीत का आनंद तो लेना पड़ता है, और श्रोताओं को तभी मज़ा देगा जब हम उनके रेडियो पर भेजेंगे एक और प्यारा सा गाना।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा और हम कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा से सारे कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को बिल्कुल पसंद आए। और कार्यक्रम को आप बिल्कुल आसान से सुन सकते हैं, रेडियो आप को आप पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, रेडियो पर किसी कार्यक्रम को आप सुनते हैं और रेडियो आपके घर में है और रेडियो को सुनने का एक अलग ही मज़ा होता है। साथ ही साथ आप रेडियो को अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, जो आपके पास एंड्रॉयड सेट है वो भी रेडियो का काम करेगा। उसका आसान तरीका है कि प्ले स्टोर में जाएं, जहां न्यूज़ ऑन एआईआर डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों को आप अपने मोबाइल पर भी आसानी से सुन सकते हैं।
1: निश्चित तौर पर, और जखन अहाँके सुनने के गप कलूँ हाँ, जानकारी के गप कलूँ हाँ, तब किताब कतौ न कतौ हमर अहाँके बीच जानकारी के केंद्र अछि और किताब जत हम अहाँ बैस के पढ़ सकी वो पुस्तकालय अहाँके सबठाम हेबाक जरूर चाही, क्योंकि पुस्तकालय एकटा एहन चीज अछि जे अहाँके ओकरा हमसब कहि सकै छी ओकरा ज्ञान के मंदिर, और एकटा एहन स्थान अछि जत सदियों के ज्ञान विचार और अनुभव संग्रहित रहते अछि। पुस्तकालय खाली किताब के संग्रह नहीं अछि बल्कि हमर सबके सभ्यता और संस्कृति के सेहो पहचान अछि।
0: जी बिल्कुल, पुस्तकालय केवल संग्रहालय नहीं है या एक शांत इमारत नहीं है, बल्कि ये किसी भी राष्ट्र और समाज की सामूहिक चेतना और बौद्धिक धरोहर होते हैं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान, संस्कृति, इतिहास को सुरक्षित करने का सबसे मजबूत माध्यम है। पुस्तकालय आजीवन शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सबसे सुलभ स्रोत है, जहां आकर कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र की परवाह किए बिना किताबों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक की बातें अगर हम करें तो साहित्य, इतिहास और पांडुलिपि को सहज कर रखने का क्रम पुस्तकालय ही करते हैं। ये हमारी संस्कृति पहचान के रक्षक होते हैं। आधुनिक पुस्तकालय केवल अध्ययन कक्ष नहीं रहे हैं, बल्कि ये सामुदायिक मेल जोल और साहित्यिक चर्चाओं और रचनाओं का गतिविधियों को केंद्रित बनाता है, जहां हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जहां हम सार्वजनिक चीज़ों से अलग हटकर या सार्वजनिक पुस्तकालय अमीर गरीब से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के हम पुस्तकालयों का विकास किसी भी समाज की प्रगति के का पैमाना होता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। पुस्तकालय से हम जो वर्तमान है उसके बारे में जानते हैं, खास तौर पे जो प्राचीन चीज़ें हैं जो हमारे देश में गुजर गया प्राचीन काल में, जिसको हमने देखा नहीं हो उसके बारे में हमने सुना था उसको हम पढ़ सकते हैं, और सुनी हुई

0: बात, पढ़ी हुई बात, दोनों में फ़र्क होता है। वहाँ पढ़कर हम बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो पुस्तकालय हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इसके लिए वक्त भी निकालना होता है। हर जगह, हर राज्य में, हर कैंपस में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में जो पुस्तकालय का आयोजन होता है, जहाँ भवन बनाई जाती है जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए। और पहले भी हमने कहा कि उम्र की परवाह किए बिना हम किसी भी जगह जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
1: और अगर पहले से गप करी तो नालंदा और तक्षशिला के पुस्तकालय दुनिया भर में फेमस रहल है, मशहूर रहल है। और पुस्तकालय में जना एखन कयाम कही चल कि हम सब विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला और सब क्षेत्र से जुड़ल हजारों किताब एक ठाम रहित है, ओकर बारे में जानकारी प्राप्त कर सकै छी, अपन किछे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकै छी, वर्तमान के केना नीक बनायल जाए तकर बारे में जानकारी प्राप्त कर सकै छी, और भविष्य के केना सुधारल जाए से बारे में किताब पढ़ के हम सब जानकारी लऽ सकै छी और अपन भविष्य के बना सकै छी। पुस्तकालय में बहुत तरह के लेखक सब अबै छथि अहाँके, और बहुत तरह के व्यक्तित्व अबै छथि जे अहाँके ज्ञान के गप करै छथि एक दूसरा से। अगर उनका ओहि काल में अहाँ पुस्तकालय जाइ छी तऽ पुस्तकालय के बाद अहाँ विचार के सेहो संगम होइत अछि, अहाँ एक दूसरा से जखन गप करब कोनो टॉपिक पर, कोनो विषय पर, तऽ ज्ञाता भेटत, और ज्ञाता से जखन अहाँ कोनो चीज के गप करै छी तऽ नव नव जानकारी प्राप्त होइत अछि, और नव नव जानकारी के संगे संगे ओहिठाम किताब उपलब्ध रहैत अछि जाहिसँ अहाँ बेसी से बेसी ओकर बारे में जानकारी अहाँके भेटैत अछि। तऽ पुस्तकालय एकटा एहन स्थान अछि जतऽ हमरा अहाँके सबके दोस्ती हेबाक चाही।
0: जी बिल्कुल, पुस्तक से दोस्ती होना चाहिए, और कुछ न कुछ मनपसंद किताबें होनी चाहिए हमारी, जिसे हमें पढ़ने का आदत होना चाहिए। और पढ़ने पढ़ाने की आदत एक बहुत अच्छी आदत है, जिससे हम अपनी जानकारियों को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ जानकारियां ले सकते हैं। आशीष ने कहा कि पुस्तकालय में हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे, जो सब पढ़ने लिखने वाले ही होते हैं, तो उनसे हम अगर कुछ चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो उससे हमारे ज्ञान और भी बढ़ते हैं और फिर मज़ा आता है।
1: निश्चित तौर पर, और ख़ास कर पुस्तकालय एक एहन क्षेत्र है जतऽ अगर हमसब अहाँके ओतऽसँ दोस्ती कऽ लै छी, किताबसँ दोस्ती कऽ लै छी, तऽ हमर अहाँके बौद्धिक क्षमताके विकास होइत अछि, आओर लगातार पुस्तकालयके दिशामे हमरा सबके किछु अगल बगलमे अगर कोनो व्यक्ति छथि तऽ हमसब अपन मिल कऽ के एकर विकास करी से जरूरी अछि। पहिलेके समयमे हमसब जखन बच्चा रही ताहि कालमे बहुत रास मैगजीन अबै छलै, बहुत रास किताब अबै छलै, आओर बच्चासब ओहिपर ध्यान दै छलथि, मुदा आब मोबाइलपर ध्यान दिअ लगलथि हँ। तो हमर अहाँके ई कर्तव्य बनैत अछि कि फेर से किताब के दिस सब घूरी, और किताब सने बच्चा सबके दोस्ती हुअन, ओ किताब पढ़त, खिस्सा पिहानी जे किताब में रहैए से पढ़त, ओहिसँ जानकारी भेटैत अछि। और किताब जखने पढ़ब तखने हमर अहाँ लग शब्द के ज्ञान होयत, और शब्द के ज्ञान भेलाके बादे अहाँ गप कऽ सकै छी एक दूसरा से। और एकटा एखन के समय में एकटा शोध भेल, एहिमे ई देखायल गेल कि लोग सब आब दूरी बनि रहल छन, क्योंकि हुनका लग शब्द नहीं छन, हम केना गप करी, की गप करी, कोन शब्द हेबाक चाही, तो तखने संभव अछि जखन हमसब अहाँके किताब पढ़ब और पुस्तकालय के दिस घूरब। तो ओना आब किछु कम से कम कनी समसामयिक घटना पर सेहो चर्चा कइए ली। आब एखन बिहार में जे छलै तऽ स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहन के कोनो तरह के टैक्स नहीं दिया पड़ल, जे एखन लोक सबके बीच में एकटा गप उठै छल, और संगे अगर पीएचडी के लिए एकटा नवका नियम सेहो लागू कयल गेल अछि बिहार में, आब कि आब 7.5 CGPA पर सीधा पीएचडी में प्रवेश के मौका भेट जायत। और आई बहुत रास जिला में बरखा, वर्षपात और आंधी के अलर्ट सेहो कयल गेल अछि।
0: वैश्विक विकास को गति देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमि महत्वपूर्ण हो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एथेनॉल मिश्रण वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, देश के आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र के में लाभ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत बहरीन के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। 17वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां उन्हें 5 T20 मैच और 3

0: वनडे मैच खेलना है। टी20 मुकाबले का तीसरा मुकाबला कल खेला गया रात, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से एक बड़े अंतर से हरा दिया। इस तरह 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे है।
1: और एहन पहिल बेर भेल है कि बाबा बर्फानी 5वें दिन अंतर्धान भ गेलक, 3 लाख श्रद्धालु के दर्शन नहीं भ सकलन। पहले कखनो 25 दिन तक दर्शन होइ छलक, मुदा आब तापमान बढ़े के कारण और बहुत रास कारण एखन भ रहल है, जैसे कि हालात बदल रहल है। और गप करी तो रेलवे 4098 टा तकनीकी पद पर भर्ती करत और ऐसे सुरक्षा सेहो बढ़त। तो एखन हम सब अहाँ के किछ समसामयिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करती रही और कार्यक्रम में चलत आओ फिर गीत सुनबे छी अपने सबके।

तक दर्शन होइ छलै, मुदा आब तापमान बढ़ैके कारणे आओर बहुत रास कारण एखन भऽ रहल अछि जाहिसँ कि हालात बदलि रहल अछि। आओर गप करी तऽ रेलवे 4098 टा तकनीकी पदपर भर्ती करत आओर एहिसँ सुरक्षा सेहो बढ़त। तऽ एखन हमसभ अहाँके किछु समसामयिक घटनाके बारेमे जानकारी प्राप्त करैत रही आओर कार्यक्रममे चलैत चलैत आओ फेर ई गीत सुनबै छी अपने सभके।

0: आब समय हमरा सबके विदा लै के लेल कहि रहल अछि, तऽ हमरा आजुक नमस्कार मिथिला से आशीष के
1: और कयाम नैयर को दीजिए आज्ञा नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर।

0: नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
4: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं।
6: रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
8: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
9: यहाँ इंडोनेशिया

0: एशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी
1: अर्थव्यवस्था है। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 7.5 सीजीपी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर एक वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना ही सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। वहीं 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर या 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। ये नियम 4 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पीएचडी की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में शोधार्थियों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। समाचार कक्ष से राहुल कुमार
2: में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पी के मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च

0: आद्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश।

0: आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निमटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निमटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267

0: देशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाए जाने से निमटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज़्ज़म जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू क़वानीन और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निमटने के लिए एक मुफाहमत नामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वजीर आजम हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा, जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
0: भारत के तरक्याती सफर और विकसित भारत 2047 के तस्वुर नीज गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के दरमियान हम आहंगी को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में मजीद गहरी शराकतदारी के लिए कहा।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप MAS 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिया में शिरकत की। खुसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखा तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
2: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ कर

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के तीन दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही 35 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे 1 खरब डॉलर तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़ीरे दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पीएमओ ने मुख्तलिफ शोबों पर एल नीनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखिर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदाम किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवस्सुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने ये हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं, जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने एक लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख्त की इजाजत दी गई थी। अमेरिका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मंसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 से हरा दिया।

0: अर्जेंटीना 78वें मिनट तक दो गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एंजो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफे पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाकये में कम से कम 3 अफराद के हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफे पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुजाकिरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमरीका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा पीएचडी में प्रवेश। 7.5 सीजीपीए पर सीधे होगा पीएचडी में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि

0: हजार कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। लोक भवन ने इस संबंध में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: नए नियमों के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 7.5 CGP या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना ही सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। वहीं 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर या 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। ये नियम 4 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पीएचडी की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में शोधार्थियों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद आएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग के सभी कार्य तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र शामिल हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन साक्षी ही स्वीकार करने का निर्णय लिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के तहत दायर किसी भी वाद की सुनवाई के दौरान आवेदक या विपक्षी से भौतिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनके स्थान पर ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार होंगे। साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों को निर्देशित किया गया है कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेज की आवश्यकता होने पर संबंधित पक्षकारों को उसे RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में लागू विकसित भारत जी रामजी योजना के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसी सिलसिले में मंत्रालय का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा, उप सचिव डॉक्टर मोनिका और वरीय लेखा पदाधिकारी विपिन बांगर ने पटना के मुख्य सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। टीम आज पश्चिम चंपारण जिले का दौरा कर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के पांचों घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज जिले ने लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथीपाव मुक्त जिला बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ये जिले अब फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निगरानी चरण में प्रवेश कर गए हैं। इन जिलों ने वर्ष 2026 के ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 के सभी पात्रता मानदंड को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कार्यक्रम के तहत अब यहां दवा वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे ये बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बीच विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के दौरान कई स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आज और कल रात के समय यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जाने वाले स्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की विशेषज्ञ टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। यह निरीक्षण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया जाएगा। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड के मानसी सहरसा स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण के लिए जल्द ही निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर महीने से दोहरीकरण का काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा और इस पर 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। DRM श्री मिश्रा ने बताया कि दोहरीकरण परियोजना के तहत 8 बड़े पुलों का निर्माण होगा। लखीसराय के समाहरणालय परिसर में 21 जुलाई से 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर में प्रतिदिन 55

0: आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। इच्छुक नागरिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल www.passportindia.gov.in पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लखीसराय को स्थल के रूप में चुन सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक सुमन सौरभ को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। लिपिक पर लाइसेंस बहाल करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। भोजपुर जिले की स्थानीय अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी देवभूषण को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से 100 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये शराब वाहन के चेचिस में छिपाकर ले जाई जा रही थी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। मैच में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 13 रन बनाए। श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को नहीं लगेगा टोल। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने चौंकाया, युवा मोर्चा के अभिषेक कुमार बने प्रत्याशी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, ग्राहकों को मिल सकता है बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प, चल रहा है अंतर मंत्रालय विमर्श। प्रभात खबर लिखता है, अयोध्या की तरह संवरेगा बाबा धाम, बनेगा कॉरिडोर, NIT पटना बना रहा है मास्टर प्लान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार मानवाधिकार आयोग का बड़ा फैसला, भरत तिवारी के माता पिता को मुआवजा दे बिहार सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा PhD में प्रवेश, 7.5 CGPA पर सीधे होगा PhD में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: एक बार फिर हम रूबरू हैं अंजुमन लेकर। आपने महसूस किया होगा सामीन हजरात कि शकील बदयोनी के गीतों के अल्फाज इतने सादा होते थे कि अवाम की जबान पर फौरन चढ़ जाते थे और मौनी की गहराई इतनी पुरअसर होती थी कि दिल को छू जाती थी। कहते हैं, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये गजल उनकी जाती और फिल्मी शायरी में गम हस्ती का सबसे खूबसूरत इजहार है। इश्क की नाकामी, जुदाई और इजहार और इंतजार के जज्बात उनकी शायरी की शनाख्त हैं। एक फिल्मी नगमा में कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपाहें भरना क्या। जी हाँ सामिन हजरात, ये मोहब्बत के इजहार में सबसे बड़ा तराना है और आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर की आवाज़ में ये आज भी बेहद मकबूल है। सामीन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए आज की खास पेशकश खानदानों का टूटता ताना बाना उनवान पर मकाला समाप्त करने का वक्त हुआ चाहता है। रुख करते हैं स्टूडियो में तशरीफ फरमा मकाला निगार मोहम्मद सदर आलम की जानिब और समाप्त करते हैं आज का ये खास मकाला।
1: खानदान को अंग्रेजी में फैमिली और हिंदी में परिवार कहा जाता है, जबकि अरबी में खानदान के लिए उसरा और आयला के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसरा का मतलब है वो मजबूत बंधन जो अफराद को एक दूसरे से जोड़े रखता है, और आयला उस जमात को कहते हैं जो एक कफील के जरिए निगरानी जिंदगी गुजारती है। खानदान मुआशरे की बुनियादी और सबसे छोटी इकाई होती है जो खूनी रिश्तों या शादी ब्याह की बुनियाद पर आपस में जुड़े अफराद पर मुश्तमिल होती है। ये अफराद एक दूसरे के साथ रहते हैं और मुश्तरका तौर पर समाजी और तहजीबी अकदार की पासदारी करते हैं। इस तरह खानदान इंसानी नस्ल और मुआशरती इस्तेहकाम का जामिन होता है। खानदान से ही कबीला, कौम और मुआशरा बनता है। खानदान इंसान की शख्सियत साजी और तरबियत का पहला मरकज होता है। इसका मतलब यह है कि खानदान मोहब्बत, जिम्मेदारी और बाहमी तआवुन का सरचश्मा होता है। इंसानी जिंदगी का सबसे अहम शोबा खानदान है। जिनों इंस में इंसान सबसे अहम मखलूक है और इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि वह तनहा नहीं रह सकती और न जिंदगी गुजार सकती है। उसको अपने इर्द गिर्द एक हिसार की जरूरत है जो उसका मुहाफिज भी हो और मोइनो मददगार भी। खानदान की शमूलियत के बगैर उसकी खुशी अधूरी होती है।

0: दलदल में फंस चुका है। हालांकि मर्द औरत दोनों बराबर है और दोनों काबिल एहतराम है। बिला वजह किसी को, चाहे मर्द हो या औरत, अजियत देना, गाली गलौज करना या मारना पीटना जायज नहीं। मर्द औरत का महाफिज है, औरत की देखभाल, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत, घरेलू जरूरियात की जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। औरत की जिम्मेदारी यह है कि वह मर्द की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत करे, शौहर के हुक्म की ताबेदारी करे और घर के अंदरूनी कामकाज का ख्याल करें। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। वालदैन को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उनके साथ वक्त गुजारें, खेल कूद और तालीम की तरफ रागिब करें और खुद भी बच्चों के सामने पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। खानदान की तरक्की चंद उसूलों पर मुनहसिर है: दीनदारी, अखलाक, बाहमी एहतराम, मशवरा, सब्र, तालीम और एक दूसरे को वक्त देना। जो खानदान इन उसूलों को अपनाते हैं वो तरक्की करते हैं, उनमें मोहब्बत बढ़ती है और वह मिसाली बनते हैं। इसके बरक्स कुछ चीज़ें खानदान को तबाह कर देती हैं, जैसे हसद, कीना, गीबत, शिकवा शिकायत, गुस्सा और बदगुमानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, बदगुमानी से बचो, तजस्सुस न करो और गीबत न करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो और जो महरूम करे उसे अता करो। खानदान में रिश्तेदारी का पास रखना बहुत ज़रूरी है। ससुराली रिश्ते का ख्याल रखा जाए, जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए। बे सोचे समझे बोलने से भी रंजिश और दूरी पैदा होती है। किसी का दिल न दुखाया जाए। आज दिल आजारी आम हो गई है, न घर में मोहब्बत रही न मुआशरे में। पहले घरों में अखलाक सिखाया जाता था, आज फिल्मी किरदारों को आइडियल बनाया जाता है। जब खानदान मजबूत थे तो बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने कौम की खिदमत की। खानदान में औरत का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। अगर वो सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे, बच्चों की तरबियत करे, सादगी अपनाए तो घर जन्नत बन जाता है। बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं। अगर वह वालदैन की इज्जत देखेंगे खुद भी वैसे ही बनेंगे। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप उसका दरवाज़ा। खानदानी ताना बाना दुरुस्त रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम माफ़ करना सीखें, शक से बचें, सच बोलें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों और मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों। आज का एक बड़ा मसला ये भी है कि लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसका हल ये है कि हम घरों में मोहब्बत का माहौल बनाएं, मिल बैठें, बात करें और एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। अगर खानदान का कोई फर्द बीमार हो तो उसकी मिजाज पुरसी की जाए, गरीब हो तो ताउन किया जाए, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाने से बचा जाए, दावत की जाए, मेहमानों की ज़ियाफ़त का खास ख्याल रखा जाए। जब किसी के यहाँ दावत में जाए तो खाने पीने के बाद मेज़बान के लिए कुशादा रोज़ी, खैर व बरकत और मग़फ़िरत व रहमत की दुआ कीजिए। हज़रत अबुल हैसम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की दावत की। जब आप लोग खाने से फारिग हुए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को सिला दो। सहाबा ने पूछा, सिला क्या दें? फरमाया, जब आदमी अपने भाई के यहाँ जाए और वहाँ खाए तो उसके हक में खैर बरकत की दुआ करे, ये उसका सिला है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि खानदान में मोहब्बत, एहतराम और इखलास ही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत मुआशरा कायम होता है। अगर हम अपने खानदान को संवार लें तो पूरा मुआशरा संवर सकता है। तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तुझसे सीखेगा जमाना तेरे अंदाज कभी।
1: बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो सामीन, हम लौट आए हैं शकील बदायूनी की फिल्मी शायरी की जानिब और हमारी इस गुफ्तगू को हम रफ्तार देंगे। फिलहाल वक्त हुआ जाता है एक प्यारी सी गजल आपकी समातों के हवाले करने का। आइए समात करते हैं ये गजल। तलत अजीज की आवाज में सजी है ये खूबसूरत सी गजल।

0: जमी होगी न सर पर आसमा होगा, जमी होगी न सर पर आसमा होगा, खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमा होगा, ना आएगा सुकून दिल को तुम्हारे भी, ना आएगा सुकून दिल को तुम्हारे भी, हमारा दर्द दिल जब भी जवां होगा, हमारा दर्द दिल जब भी जवां होगा, खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, और तुम्हारे जब्त का टूटेगा यारा भी, तुम्हारे जब्त का टूटेगा यारा भी, हमारा हाल जब तुम पर आया होगा, हमारा हाल जब तुम पर आया होगा, खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा। और मक्ता हाजिर है, सबा सोचा न था दिन ऐसे भी होंगे, सबा सोचा न था दिन ऐसे भी होंगे, के जद में बिजलियों की आशियां होगा, के जद में बिजलियों की आशियां होगा, सबा सोचा न था दिन ऐसे भी होंगे, के जद में बिजलियों की आशियां होगा, खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा।
1: दोस्तों, शकील बदायूनी 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुए। अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर मुंबई का रुख किया और हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बेशुमार लाजवाल गीत, नगमे और गजलें लिखी जो आज भी मकबूल हैं। उनकी शायरी में मीर तकी मीर और दाग दहलवी जैसी क्लासिकी रवायत की झलक हम सभी को देखने को मिलती है। आइए सामीन, एक और प्यारी सी गजल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ, महजूज होते हैं इस खूबसूरत सी गजल से।

दोस्तों, शकील बदायूनी ने फिल्मों के लिए भी ऐसे गीत लिखे जो अदबी एतबार से किसी शाहकार से कम नहीं है और उनके ये गीत हमेशा के लिए अमर थे और अमर रह जाएंगे। इसके साथ ही सामीन हजरात, आज की अंजुमन को हम करते हैं इख्तिताम पजीर, लेकिन चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गजल, समात कीजिए।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी पटना है मीडिया वे
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चोर और चांद से, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत योगेश का है और संगीत है निखिल विनय का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सिटी के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सरगम से, आवाजी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम। गीत शकील वादियानी की थी और संगीत था नौशाद का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत। कलाकार हैं अरविंद कुमार झा।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं लोक गीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है पार्वती मिश्रा का।

पूनम कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है पार्वती मिश्रा का।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दरभंगा है, आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। इस सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन महाराज। आइए सुनते हैं इनका बांसुरी वादन।

0: नमस्कार।
1: आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान पंडित किशन महाराज जी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे अपने गुरु की छवि दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनके साथ एक मंच पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है और ये संभव हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं इस लायक तो नहीं हूं मगर जो भी मैंने टूटा फूटा सीखा है वो प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य महाराज जी चाचा जी से आशीर्वाद चाहता हूं और उपस्थित गुणीजनों से सबसे मैं इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहीर भैरव, आलाप जोड़ झाला और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार थे रोनू मजुमदार और किशन महाराज। आप सुन रहे थे इनका बांसुरी वादन। ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण है। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी।

0: यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और

शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ।

0: और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धंसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है

0: कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ ये तो है, आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।

0: हाँ ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बना

0: आने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
1: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
2: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
3: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
1: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
2: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
3: कैसे चित्र?
2: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
1: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
2: क्यों नहीं, अभी चलिए।
1: चलिए।
2: आइए।
1: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
3: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
1: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
3: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
1: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
2: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
1: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा।
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
3: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
3: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
3: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
3: सच?
1: धन्यवाद।
4: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ नए फिल्मों के गाने। शुरुआत हम करते हैं फिल्म भोला के इस गीत से, जिसे आवाज दी है बी प्राक ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अभी समय हो चला है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

स्वागत है आप सभी सखी बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। अभिवादन स्वीकार करें अपनी सखी आरती का। सखी बहनों कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और खुशहाल होंगी, और इस समय आप अपने सारे कामकाज निपटा कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो बहनों, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने। साथ ही आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनवाएंगे, और हर दिन की तरह आज भी हम आपको वार्ता सुनवाएंगे हमारी रेडियो सखी लालती जी से। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। बहनों, आर्थिक प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही बड़ी है। महिलाएं घर चलाने से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इनका हाथ है। जब महिलाएं घर चलाती हैं, परिवार को देखती हैं या देखरेख करती हैं, इसके अलावा वो ऑफिस भी संभालती हैं और पैसे को भी बचत करना जानती हैं। वो पैसा अच्छी तरह से बचत करना जानती हैं, पैसे का सही हिसाब रखती है। जी हाँ, हम महिलाएँ घर के खर्च में से कुछ पैसे बचाना भी अच्छी तरह से जानती हैं, और ये बचत बुरे समय में काम आती है, जैसे अचानक बीमारी या घर की मरम्मत में भी काम आ सकती है। साथ ही अच्छे काम में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई या शादी या सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बहनों, बचत होने से घर में तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाना ज़रूरी है, और ये काम हम महिलाएं ही बेहतर ढंग से कर सकती हैं। जैसे वे घर की ज़रूरत की चीज़ों को सस्ते और अच्छे दामों में खरीदती है, उनको पता होता है कि आमदनी के हिसाब से खर्च का बजट तय करती है, और उसी अनुसार से वो खर्च भी करती है, और मुश्किल समय के लिए भी कुछ पैसे बचाती है। सही निवेश से वे घर के पैसों को बैंक, पोस्ट ऑफिस या सुरक्षित जगहों पर निवेश करती है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

बहनों, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत होना। सशक्तिकरण केवल महिलाओं को अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की जरूरत है। जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सम्मान और समान अवसर मिलते हैं, तब वे अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको पता होगा कि महिलाएं परिवार की आधारशिला होती है। वे माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में समाज को मजबूत बनाती है। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, तभी तो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित और संस्कारी बना पाएंगे। बहनों, आर्थिक रूप से मजबूत महिला समाज में सम्मान प्राप्त करती हैं। अब महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के समान अवसर भी मिल रहे हैं।

सरकारी योजना भी शुरू हुई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण शुरू योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है। गांव की महिलाएं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं छोटे समूह बनाकर एक दूसरे की मदद करती है और अपना रोजगार भी करती हैं। इसमें लोगों की सुविधा भी है। इन समूह के जरिए महिलाओं को आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है, इससे वे खेती या अन्य कोई भी कार्य शुरू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इस पहल के अंतर्गत 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ता का विषय है योग और महिलाएं। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी लालती जी।
2: नमस्कार बहनों, लालती की ओर से। प्यारी बहनों, आज छोटी मुलाकात के अंतर्गत हम बातें करते हैं महिलाओं के योग की आवश्यकता से संबंधित। श्रोता बहनों, बचपन से लेकर वयस्क होने तक एक महिला का शरीर कई बदलावों से गुजरता है। भावनात्मक और मानसिक स्तर पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से कई महिला को कई कारणों से कई उतार चढ़ाव और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर इन सब के बीच महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह मासिक धर्म संबंध

ही समस्याओं, स्त्री रोग संबंधी विकारों, तनाव, शारीरिक दर्द और अन्य समस्याओं से जूझती है। और योग एक ऐसी प्राचीन अभ्यास है जिससे विश्व भर में सभी आयु और लिंग के लोगों को लाभ मिलता रहा है। इसलिए शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं को योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। श्रोता बहनों, महिलाओं के लिए कुछ विशेष आसनों का अभ्यास मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। योग में समग्र उपचार के गुण होते हैं जो महिलाओं को शक्ति, लचीलापन, संतुलन बढ़ाने और शरीर को सुडौल बनाने, तनाव और चिंता कम करने और अधिक विश्राम प्राप्त करने में मदद करते हैं। श्रोता बहनों, ये आसन महिलाओं को अपार लाभ प्रदान करते हैं। इन आसनों में 8 मुख्य आसन हैं जो महिलाओं के लिए रामबाण के रूप में काम करता है। पहला है विपरीत करनी यानी उल्टा आसन, दूसरा भद्रासन यानी शुभ आसन, तीसरा मत्स्यासन यानी मछली की मुद्रा, चौथा पद्मासन, आप सभी जानती हैं बहनों, पांचवा नटरार्थ आसन यानी

0: बहनों, ये आसन महिलाओं को अपार लाभ प्रदान करते हैं। इन आसनों में 8 मुख्य आसन हैं जो महिलाओं के लिए रामबाण के रूप में काम करता है। पहला है विपरीत करनी यानी उल्टा आसन, दूसरा भद्रासन यानी शुभ आसन, तीसरा मत्स्यासन यानी मछली की मुद्रा, चौथा पद्मासन, आप सभी जानती हैं बहनों, पांचवा नटरार्थ आसन यानी घुटने टेककर प्रार्थना करने की मुद्रा, अगला है हस्त पादंगुष्ठासन, अगला है उक्टासन और धनुर्वक्रासन यानी धनुष आसन। तो बहनों, इन आसनों का प्रतिदिन अभ्यास अवश्य करें और स्वस्थ रहें।
1: बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। तो हर दिन कुछ खास में आज मैं आपको आपके लिए लेकर आई हूँ मशरूम फ्राई। बहनों, आपको पता होगा कि हर रूप में मशरूम फायदेमंद है। कम कैलोरी, ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मशरूम अपने स्वाद और पोषण से लोग इसे खूब पसंद करते हैं। झटपट पकने वाला मशरूम स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो बहनों, चलिए आज मैं आपको मशरूम फ्राई आपके लिए बनाती हूँ, वो भी 4 लोगों के लिए। आप चाहे तो 5 या 6 या फिर आपके घर में जितने आदमी हैं उसी अनुसार से आप बना सकती हैं। फिलहाल मैं 4 लोगों के लिए ही बनाने जा रही हूँ। सामग्री है, मैं आपको बता देती हूँ कि कटा हुआ मशरूम 400 ग्राम, कटी हुई मिर्च 2, कटी हुई शिमला मिर्च 1, अदरक 1 टुकड़ा, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती थोड़ी सी, तेल आवश्यकता अनुसार। तो बहनों, इतना तो आप समझ ही गई होंगी, चलिए मैं विधि बता देती हूँ। सबसे पहले गैस को ऑन करें और कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर उसे थोड़ी देर के लिए मतलब हल्का गर्म करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरे मिर्च और शिमला मिर्च डालकर लगभग 1 मिनट तक भूने। अब कढ़ाई में मशरूम डालें और तेज आंच पर मशरूम को हल्का पकाएं। जब मशरूम पकने लगेगा तो उसमें से पानी निकलने लगेगा। आपको मशरूम को लगातार चलाते हुए पकाना है। अब कढ़ाई में बाकी सामग्रियाँ जैसे हल्दी, काली मिर्च, नमक और गरम मसाला डालें। इसको भी कुछ देर चलाते हुए पकाएं और उसके बाद गैस ऑफ कर दें। तैयार मशरूम फ्राई को धनिया पत्ती से सजाएं और अपने साथ साथ परिवार को भी खिलाएं, अपने आस पड़ोस को भी, सखी सहेलियों को भी खिलाएं और उसे भी भेजें और हमें ज़रूर बताएं कि मशरूम फ्राई आपको कैसा लगा। आप चाहें तो बहनों, ये तो हम आपको मशरूम फ्राई बनाने की विधि अभी मैं बता रही थी। तो ये मसाले आप चाहें तो घर में भी बना सकती हैं और घर का मसाला बना हुआ कुछ भी खाने को आप बनाती हैं, सब्जी वगैरह, दाल फ्राई या कुछ भी, तो आप उसमें घर से अगर घर में अगर मसाला तैयार करती हैं सिलवट पे, तो वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बहनों, इसी तरह से आप चटनी बनाए या फिर आम की चटनी भी आपको बता देती हूँ। अधिकतर घरों में 70% से ज़्यादा लोग खाने के साथ साथ चटनी खाना पसंद करते हैं। अगर आपको भी खाने में चटनी खाना पसंद है तो आप गर्मी के इस मौसम में कच्चे आम से आप झटपट और तरह तरह की चटनियाँ तुरंत बना सकती हैं। तो आज मैं आपको बता देती हूँ आम और नारियल की चटनी, वो भी आप जानते हैं कि 4 लोगों के लिए ही आज बना रही हूँ। सामग्री है कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, नारियल 1 कप कटा हुआ, कच्चा आम 1/2 कप, हरी मिर्च 2, नमक स्वाद अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार। अब तड़के लगाने के लिए हमें तेल चाहिए। तेल 1 चम्मच, सरसों 1 छोटी चम्मच, सूखी लाल मिर्च 2 चम्मच, करी पत्ता 10 या 12। विधि है, एक ग्राइंड में आम के टुकड़े कद्दूकस किया हुआ नारियल

नारियल, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस ले और मिश्रण को एक बड़ी कटोरी में निकाल ले और उसमें सरसों डाले। जब सरसों चटकने लगे तो तेल में करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर गैस ऑफ कर दे। तैयार तड़के को चटनी में डालकर मिलाए और फिर इसे खाने के साथ खाए और अपने परिवार को भी खिलाए, आस पड़ोस में भी थोड़ा बहुत भेजे। तो बहनों, आज आम और नारियल की चटनी भी आप बना सकती हैं अपने घर में अपने परिवारों के लिए, और सब लोग एक साथ बैठकर भी खा सकती हैं। तो बहनों, अब तो बहनों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमें आप पत्र के माध्यम से भी लिख करके भेज सकती हैं। हमारा पता है, सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन नंबर 8460004। तो इसी के साथ दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आइए अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले

समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के कार्यक्रमों में एक नजर हम डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर गीतों के रंग, 10 बजे प्रसारित किया जाएगा लोक माधुरी। 9:30 पर समय होगा चर्चा का विषय है दिल्ली केंद्र से प्रसारित ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। उर्दू खबरें 9:15 पर, न्यूज एंड 9 का समय होगा 9 बजे और समाचार संध्या 8:45 से। सिंगरहार आप सुनेंगे 8:15 पर।

फिल्म संगीत 7:52 से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:30। खेती गृहस्थी 7 बजे से। चर्चा आप सुनेंगे उर्वरकों की शुद्धता की जांच। और गांव घर का समय होगा 6 बजे 6:30। आज आप सुनेंगे घर आंगन। आज हम चर्चा करेंगे आज का बचत कल के सुख का आधार और प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। 6:45 से आप सुन पाएंगे गांव घर के अंतर्गत। मैथिली संवाद 6:25 से। विद्यापति गीत का समय होगा 6:10। फिल्म संगीत 5:40 पर प्रसारित किया जाएगा। और

कार्यक्रम की शुरुआत होगी संध्या 5 बजे तरुण कुसुम के साथ। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के बाद अब एक नजर डालेंगे इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। तीन बजे से आज हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत, 2:30 पर और 1:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15, रोजगार सूचना 2:10 पर, प्रादेशिक समाचार 2 बजे और इलाकाई खबरें 2:05 पर। और अब सुनेंगे आप कुछ ही देर में देशभक्ति गीत। आज हम आपको सुनवाएंगे फाइटर फिल्म का गीत विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी की आवाजों में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हम आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत।

वंदे मातरम। ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। अब समय हो चला है कि फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, आइए आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गानों का।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आप सुन रहे हैं मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म नूरी का ये गीत, जिसे आवाजी दी हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। गीत के शब्द हैं जान निसार अक्षर अख्तर के और संगीत है खय्याम का।

फिल्म इम्तिहान में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं रेडियो सेट के अलावा न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल हैंडसेट पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आइए अब जुड़ते हैं हमारे पटना केंद्र से दो प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों के लिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के सभी कामों को तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे यह बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवल्यूशन।

0: कहानी कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के 5 घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थ यात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। जिन तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करें। परामर्श में कहा गया है कि पंजीकृत यात्रियों को उनकी निर्धारित तिथि से पहले यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सिवान और नालंदा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक के कुल 1829 यानी 1829 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14 जुलाई 2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 होगी। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है। आप इसके लिए upssc.gov.in पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। JKSSB के कुल 130 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन शुरू होने की तिथि 22 जून 2026 थी और जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष। आप देखिए jksb.nic.in। SBI के कुल 1500 पदों पर आवेदन अभी जारी है। आज ही अंतिम तिथि है यानी 8 जुलाई 2026 को अंतिम तिथि है। आयु सीमा है 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच। आप आवेदन कर सकते हैं sbi.co.in पर। BOI ये भी अपने 779 पदों पर आवेदन जारी किए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 30/6/2026 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। आयु सीमा 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच। ऑफिशियल वेबसाइट है bankofindia.bank.in। रेलवे RRB टेक्निकल एग्जामिनेशन

सन 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित है 6557 पदों पर। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026, आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026, आयु सीमा 18 वर्ष से 30 वर्ष, टेक्निकल ग्रेड एक सिग्नल के लिए आयु सीमा 33 वर्ष है। आप आरआरबी के वेबसाइट पर जाकर इस आवेदन को देख सकते हैं। रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी दरभंगा। आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुन पा रहे हैं रेडियो सेट पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल हैंडसेट पर। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। फिलहाल हम जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण से दोपहर समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांभानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांभानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व

0: रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के

0: रात एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मोज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़

0: हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। एक बार फिर से आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम से। कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, शब्द हैं समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक, रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो। उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।

मनहर और अनुराधा पौडवाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं राजन कुमार मिश्र। हम आपको सुनवाते हैं राजन कुमार मिश्र के स्वर में कुछ सुगम संगीत।

आप सुन रहे थे सुगम संकेत, कलाकार थे राजन कुमार मिश्र। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम संध्या 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: चल भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करवा

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: हो।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
0: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर
2: इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं।

0: घाट कहा जाता है, आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई, और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा, जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था, और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया।
0: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं सिले शादी से ज्यादा पसंद करती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
0: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं, लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
0: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम, और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट, अभी आपने बताया खट कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है। हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती है देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होते हैं ना बहुत
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
0: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल

0: भी कहा आपने, जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
1: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
0: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
1: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा आपने चंचल की, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा।
0: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें, तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है, तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना,
1: सही कहा,
0: और करनी में फर्क हो जाता है।
1: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नीयत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी।
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आंच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आंच धीमा पर तलने में तेल पिएंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने

0: बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोएं। पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
1: बिल्कुल।

0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ है और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ है,
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विवेक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूं, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूं, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूं।
1: जी, बिल्कुल।
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो

0: पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ। और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूं, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूं मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूं। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन और बानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाज आई है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है। और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है। हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूं, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी, जी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-2,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाए, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाए, पाठक से जोड़ पाए। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूं। ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े।

0: वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं, कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा नयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
0: जी,
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
0: जी।
1: एक दिन मैं, एक सब्जी होती है कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं, वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
0: जी।
1: तन्वी श्यामा शिखरि दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
0: जी,
1: मध्य क्षामा चकित हरडी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
0: जी।
1: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
0: जी।
1: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी

0: बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आजादित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृद भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहां से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह की निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी,
1: ये हम समझ सकते हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी, क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म
0: जी।
1: पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर पाएंगे
0: जी। हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: मुझे।
1: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
2: जी
1: को लेकर
2: जी
1: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
2: जी जी जी मुंदागिनी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
1: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
2: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूं मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से थे नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
1: जी।
2: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाए, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
1: अच्छा,
2: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
1: जी
2: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
1: जी।
2: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
1: जी।
2: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
2: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
2: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
2: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके

0: जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी, बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसकी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी।
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है
1: बिल्कुल। तो रायडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती है। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहां तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखा

0: आने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी।
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरा
0: मेरे गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद
1: है।
0: जी इसे सुनना चाहूंगा मैं।

0: दूर।
1: राडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
2: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
1: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
2: जी
1: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां के नाम

0: माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे हम विकास नहीं कर सकते, और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
0: जी।
1: जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश?

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी सांधिकालीन सभा, युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम के माध्यम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। मस्त मौसम है, जी हाँ, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा हुई है और अच्छी वर्षा हुई। मौसम में काफ़ी बदलाव आया है और तपती धरती को फिर से राहत मिली है। गत दिनों में भी हल्की फुल्की वर्षा हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी अधिक वर्षा हुई है। आनंद लिया है हमने और आपने भी ज़रूर लिया होगा आनंद इस वर्षा का। तो अब से लेकर 5:40 तक हमारा और आपका बना रहेगा साथ। सुनेंगे लोकगीत, गज़लें और गैर फिल्मी गीत। तो शुरुआत करते हैं इस देवी गीत से।

श्याम मोहन मिश्र को आप सुन रहे थे अभी, और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत संत कुमार झा का गाया हुआ।

तदस्तु आप आनंद ले रहे थे लोक गीतों का। आज क्रमशः आपने विभा झा, श्याम मोहन मिश्रा, संत कुमार झा और विभा सिन्हा को सुना। अब शुरू करते हैं आप तक पहुंचाने का गज़ल का सिलसिला। आज हम आप तक पहुंचाएंगे क्रमशः पयाम सईदी, संत दर्शन सिंह और सईद शाहिदी की गज़लें। आवाज़ें होंगी क्रमशः चंदन दास,

आप सुन रहे थे ये गज़ल गुलाम अली की आवाज़ में। इस गज़ल को लिखा था संत दर्शन सिंह ने। अब जो गज़ल आप सुनेंगे वो लिखी हुई है सईद शाहिदी की, आवाज़ है घनश्याम वासवानी की।

घनश्याम वासवानी की आवाज़ में आप सुन रहे थे सईद शाहिदी की ये गज़ल। और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं कमल बारोट का गाया हुआ ये गैर फिल्मी गाना।

कमल बारोट के स्वर में सुन रहे थे आप ये गैर फिल्मी गाना। इसके साथ ही युवा दोस्तों को हम अब चाहेंगे विदा होना और विदा करना, क्योंकि समय समाप्त हो चला है आज के इस कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

तरुण कुसुम सुन रहे थे युवा दोस्त, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस समय जो कार्यक्रम होता है 5:40 पर संध्याकाल में, वो नई फिल्मों के गानों पर आधारित होता है। तो इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे नई फिल्मों के गीत। ये पहला गाना इरशाद कामिल का लिखा हुआ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संगीत रवि बसरूर का, आवाज़ बी पराग की, और फिल्म का नाम है भोला।

आप सुन रहे थे दीप पराग को, फिल्म थी भोला। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म द रन छू से। आवाजें ऋतु पाठक और गीत सागर की हैं, शब्द रचना राजेश मंथन की और संगीत विजय वर्मा का है।

अब सुनिए मीत ब्रोस और मोनाली ठाकुर तथा पीयूष का गाया हुआ सत्य प्रेम की कथा का ये गाना। गाने को लिखा है कुमार ने और संगीत मीत ब्रोस का है।

ये गाना आप सुन रहे थे सत्य प्रेम की कथा का। आवाजें थी मीत ब्रोज, मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया की। शब्द रचना कुमार की थी और संगीतकार थे मीत ब्रोज। तो सत्य प्रेम की कथा के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। 6:25 पर हम लेकर आते हैं मैथिली संवाद। 6:30 गांव घर कार्यक्रम के अंतर्गत आज होगा महिलाओं के लिए घर आंगन। चर्चा सुनेंगी महिला बहनें, आज का बचत कल के सुख का आधार। जी हां, आज की बचत कल के सुख का आधार। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा इसी के अंतर्गत, घर आंगन के अंतर्गत पैरामेडिकल है पारस। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चा होगी उर्वरकों की शुद्धता की जांच, साथ ही कृषि गतिविधि भी आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा मौसम संबंधी जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बातें होंगी। 7:52 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:15 पर मैथिली कार्यक्रम सुनिएगा सिंगरहार, इसके अंतर्गत कथा पाठ होगी वशिष्ठ नारायण झा की। 9:30 हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम, चर्चा का विषय है। 10:00 लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी लेकर आएंगे, समय याद रखिएगा 10:00। और 10:30 फिल्मी गानों का कार्यक्रम सुनिएगा गीतों के रंग। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

चाह, राम कुमार मल्लिक के, गौतम मिश्र और काशीनाथ झा किरण के गाए गए विद्यापति गीत। ये पहला गीत राम कुमार मल्लिक का गाया हुआ पहुंचा रहे हैं आप तक।

गौतम मिश्र के स्वर में आप सुन रहे थे ये विद्यापति गीत। अब जो विद्यापति गीत आप सुनेंगे उसे गाया है काशीनाथ झा किरण ने।

0: सुनेंगे।
1: एफएम रेनबो पटना सा प्रस्तुत एक संवाद, संवादक संघ होमची प्रियंका कुमारी। राज्य मंत्री परिषद द्वारा पटना सा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा आ गया धैर प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के निर्माणक लेल अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेबाक स्वीकृति देल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडलक बैसार में एहि आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल। एकर अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड BAIDCL के गठन के स्वीकृति प्रदान कैल गेल। ई निगम राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचनाक योजनाबद्ध विकास संचालन आ प्रभावी प्रबंधन कार्य करत। संगे कैबिनेट पटना एम्स के विस्तारक लेल दानापुर के भूसौल में 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहणक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कैल गेल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहलन जे हुनक मंत्रालय कम वर्षाक कारणे उत्पन्न परिस्थिति सब पर लगातार नजर रखने अछि। ओ कहलन जे अल नीनो के प्रभाव सँ कम वर्षा वाला बिहार समेत विभिन्न राज्यक 178 जिलाक निगरानी कैल जा रहल अछि। श्री सिंह कहलन जे सरकार कोनो विपरीत परिस्थिति सँ निपटबाक लेल पूरा तरहें तैयार अछि। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आ जिला सभक लेल प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 लेल रिपोर्ट जारी कैल गेल अछि। रिपोर्टक अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आ छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्य में स्कूली शिक्षाक स्थिति चिंताजनक अछि। ई राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बनल अछि। ओतहि चंडीगढ़ एहि सूची में देश भर में पहिल स्थान प्राप्त कयलक अछि। ध्यातव्य अछि जे भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्वक सबसँ पैघ शिक्षा प्रणाली में सँ एक अछि। एहिमे लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ सँ बेसी शिक्षक आ 25 करोड़ छात्र छथि। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि जे 4म चरणक शिक्षक नियुक्ति परीक्षाक लेल विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित कयल जायत। श्री तिवारी गोपालगंज में पत्रकार सब सँ गप करैत कहलनि जे एहि संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग के अधियाचना पठेबाक निर्देश देल गेल अछि। ओ कहलनि जे शिक्षक सभक स्थानांतरणक कार्यक्रम सेहो जल्दीए जारी कयल जायत। श्री तिवारी कहलनि जे सरकार बहाली और तबादलाक प्रक्रिया के समयबद्ध आ पारदर्शी तरीका सँ पूरा करबाक लेल प्रतिबद्ध अछि। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल कहलनि जे आब राजस्व विभागक सब काज पूरा तरहें ऑनलाइन कयल जायत। पटना में संवाददाता सबसे गपशप में ओ कहलनि जे किछु मामला में फर्जी हस्ताक्षरक माध्यम सँ दस्तावेज सभक दुरुपयोग मामला सामने आयल अछि। ओ कहलनि जे एहन फर्जीवाड़ा के रोकबाक लेल आब डिजिटल हस्ताक्षरक माध्यम सँ सब प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित कयल जायत। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटनाक लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पतालक निरीक्षणक बाद 2 डॉक्टर के कारण बताओ नोटिस जारी कयलनि अछि। पटना में पत्रकार सबसे गप शपक क्रम में ओ कहलनि जे निरीक्षणक क्रम में 1 डॉक्टर निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहि पहुँचल छलथि, जखन कि दोसर डॉक्टर पर मरीज के जांचक लेल अपन निजी क्लिनिक पठेबाक आरोप छनि। भारतीय जनता पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन काल्हि राज्यक 2 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुँचतथि। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारी सभक संग बैसार में बांकीपुर विधानसभा सीटक लेल भऽ रहल उपचुनावक तैयारीक समीक्षा करतथि। संगहि NDA घटक दलक वरिष्ठ नेता सभक संग बैसार सेहो करतथि। श्री नवीन 10 जुलाई के पटना में आयोजित NDA के 5 घटक दलक बैसार में भाग लेतथि। प्रदेश में मॉनसूनक सक्रियता सँ लगातार पानि पड़ि रहल अछि। मौसम पूर्वानुमानक अनुसारे

0: राज्यक अन्य जिला सब में वर्षाक संभावना अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है, लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन में सब श्रोता लोकन के संगे सब बहन सबके मुनि दिस से स्नेहपूर्वक नमस्कार संगे सब गोटे के स्वागत करे छी। लाल बहन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मुनि बहन आ संगे सब बहन के हमरो दिस से नमस्कार। मुनि बहन आई त दुगुना मन खुश भ गेल। एक त बहन सब से एक सप्ताह में भेट घाट हो या त बहुत रास गप सब करे छी आ ओई पर से जे आई मेघ जे बरखा जे आई भेल सुंदर से त मन आनंद आनंद भ गेल
0: कि एकदम सब गोटे के अपन बहन सब काज करत करत जे गरमा जाय छथिन से एकदम सब गोटे के ठंडा ठंडा शीतलता के सब एहसास भ रहल छै। ओई
1: ठंडा दिमाग से जे गप सोच भाई तो सब नीक सोचे तो गर्मी में तो मनो में कनी गर्मी सब मन आउल बल भाय छे तो उचित सोचो पर माने होय छे जे किसी गलते सोचा गेल ना
0: एकदम
1: गपो सब में होय छे माने कोनो काज में मन नहीं लगे छे एहन जान मौसम भ जाय छे तो सब काज माने सुचारू ढंग से चले लगे छे
0: आ ओहिना जखन अपना सब बहिन सब बैसै छी घर आंगन में अपन अहाँ के सब के घर आंगन में बैसे छी तो जानकारी के गप करे छी लाल बहिन
1: रूप से
0: आ देखब जे नव छथि नव बहिन सब छथि नव घर बसलन ये छोट छोट धिया पुता छथिन ओ सब अपन जीवन भावी भविष्य के लेल चिंतित रहे छथिन जे बहिन देखू केना के किछ बच नहीं पाबैये घर गृहस्थी में हमरा जे आबे वाला भविष्य के लेल धिया पुता के किछ बचा कर राखी। आप देखियो इहो त बड कामक गप अछि काजक गप अछि केना बचाओ इहो तो युक्ति सब गोटे के तो आबैत नै छै।
1: हाँ किछ टिप्स त एलेल होइ छै लोक कहै छै अनुभव सेहो बड़ पैघ चीज छै मोनी बहिन जँ छोट बहिन छथिन आ पैघ बहिन से अनुभव लेथिन तऽ जरूर साझा हम सब करै छी आ बुझबै छथिन। देखियौ छोट बहिन के तऽ एखन दिमाग ओते परिपक्व नै भेलन है ओइ दुनिया बाहरी दुनिया के चकाचौंध में जीवऽ चाहै छथिन मुदा जे हमर बहिन सब जे छथिन बुजुर्ग भऽ गेल छथिन ओ तऽ सब रास्ता देखने छथिन। आइ देखियौ जे अपना सब देखियो पहले जमाना में ते नौकरी नहीं छले लोग माने खेती बाड़ी पर निर्भर रहे छलखिन है आ तैयो हमर दादी नानी सब कतेक निक से अपन घर चलबे छलखिन है आ कहियो हुनका सब के दूटा पाई के अभाव नहीं होय छलन है आ बेर पर वो सब बहुत रास पैसा पौती में जमा क के रखे छलखिन है मोनी
0: समय पर निकाले छलखिन।
1: हां समय पर ओ जे केओ जमीन किने छलाह कि केओ घर बनबे छलखिन है त वो अब दै छलखिन है त वो सब आश्चर्य करखिन जे अहां लग में एते पैसा कोना क आयल त देखियो तो सब गुड़ है सीखवा चाहिए। देखियो खेनाइ पिनाइ जे आवश्यक खर्चा से निश्चित रूप से करू मुदा देखा देखी ककरो नहीं करू देखाओस नहीं करू
0: एकदम लाल बहिन अखन जे कहलो चका चौंध में जे चमकैत अछि ओहि दिस तऽ आकृष्ट जेना कीड़ा मकोड़ा के नहीं देखे छी जे बॉल जोड़िए तऽ केना सब ओहि की तरफ लुटकी लागैए
1: फेस कमरि जाइए ने सेहो नहि देखे छी
0: बस तऽ हर चमकैत चीज के पाछा अपना सब के तऽ ई तऽ होइ छै जे नव नव घर बसाबै छथिन हुनका तऽ ई ज्ञान बेटी पुतो के दै छी ओ नै लेब चाहै छथिन कहथिन जे कि ई हमरा खुश नै रह देब चाहै छथिन वह आगे चल के समस्या हुनके सबके होइ छै
1: आ बाद में फेर पछतेथिन जे हम हिनकर बात नै मानलौ त सेहो होइ छै त देखियौ जहन हम ई कहब मोनी बहिन जो हमर आमदनी एक रुपया है तो हम 12 आना खर्चा करब 4 आना बचाव के कोशिश करब तो हम जिनका जतबा छन के 1 लाख कमाई छत तो ओकर अहाँ निकाल दिए ओते कहाँ बचाओ जे के 10,000 कमाई छत तो लेकिन बचत किछ ने किछ भविष्य ले करनाए बहुत आवश्यक छ ई गिरह बनि लिया
0: एकदम
1: तखने अहाँ के जीवन आगू सुखी रहत आ ककरो लग में अहाँ के हाथ पसारने पड़त की कहे

0: ककरो सबके लोक मांगा जाए छै तऽ मरि कऽ मांगा जाए छै, आ ओहिसँ पहिने जे केओ कहि दै छै हम अहाँके नहि देब तऽ कतेक दुख होइए मोनी बहिन, जे फलना बहिन ओतऽ गेलहुँ दूटा पाइ लए ओ नहि कहि देली तऽ कतेक कष्टके अनुभव होइए।
1: कनी कनी बचा कऽ अपने
0: किया मांगब ककरोसँ,
1: तऽ घरमे आवश्यकता पड़त तऽ हम ही किया नहि निकालि कऽ दऽ देब
0: जे हमरा ककरोसँ माँगा, ककरो आगू हाथ पसारय पड़त। जँ महिनामे हमरा तनख्वाह भेटैए तऽ 30 तारीख तक हमरा चलेबाक अइ तऽ ओहि बजटसँ हम अपन घरके चलाबी, आ किछु नहि किछु बजा कऽ, जेना धियापुता बीमारे भऽ गेला, बियाहेके दानके एखन समय नौते पेहान आबि जाइए, ओहिमे फेर एक्स्ट्रा खर्चा होइए, होइए ने।
1: लाल बहिन, घरे गृहस्थीके गप करी, भनसे घरमे जे अपना सब सामान आनै छी बजट बना कऽ चलै छी तऽ बहुत रास सामान एहन होइत अछि जे किछु ने किछु बढ़ि जाइत अछि, किछु घटैत अछि, किछु बढ़ैत अछि, ओ तऽ घरनीके काज छै जे कि ओ केना मैनेज करै छथिन अगला महिनामे, अगला मासमे
0: जे बढ़ि गेलै तऽ अगला महिनामे हमसब खर्च कऽ लै छी,
1: तऽ ओ बचत कऽ कऽ जरूरसँ
0: राखि ली। ई नहि जे आब हँ एकरा काज भऽ गेलै तऽ आब हमरा कने आवश्यकता अइ तऽ ई दूर भऽ गेलै से नहि,
1: आ नहि तऽ फेर ई सामान अइ छियै तऽ उएहमे प्रयास राखी जे भरि मास चला ली तऽ ओ पैसा जे बचि जायत अगला मासमे ओ नहि
0: काज आबि
1: जायत, ओ तऽ अहाँके बचत भेल,
0: बचत भेल।
1: तऽ ई छोट छोट बचत जे कहै छै ने बूंद बूंद सँ घैल भरैत अछि, ओ एक समयमे जखन धियापुता नमहर होइत अछि तऽ पढ़ाइ लिखाइमे लगा दियौ, घर बान्हू ओहिमे पैसा मोटगर चाही, धियापुता के
0: मुंडन उपनयन करै छी, शादी ब्याह करै छी, ओहिमे अहाँके
1: बहुत रास खर्च एहन होइत रहै।
0: मोनी बहिन याद अइ अपना सब गुल्लर खरीद कऽ ओहिमे पैसा जमा करै छलहुँ, आ जहन काज होइ छलै तऽ ओकरा फोड़ि दै छलियै, सबटा पैसा निकालि लै छलहुँ। तऽ एहन कखनो होइ छै परीक्षा, कखनो गार्जियनेके पासमे नहि रहै छनि पैसा फॉर्मे भरऽके रहैए तऽ पैसा जमा रहैए, तहन ने बहुत रास एहन काज होइए अहाँ कहलहुँ हँ पढ़बा लिखबामे। तऽ कहबाक तात्पर्य जे छै किछु ने किछु बचत निश्चित रूपसँ करबाक चाही, आ एतबे चादर मने पसारी जो चादर फाटि नहि जायत जतबे आवश्यकता हेबा। कहबाक तात्पर्य ये जे ककरो नकल नहि करी, देखा देखी नहि करी, अपन दायरामे रही,
1: आ कनी कनी जे आइ अपना सब जँ बचाबै छी तऽ काल्हिके जे सुख अछि ओकर अपना सब उम्मीद कऽ सकै छी, वएह आधार अपना सबके बनैत अछि सुखके।
0: हँ, आ देखियौ आ आइ तऽ सुखक दोसरो आधार बनैए, किएक तऽ एहन सुन्दर जे बरखा भेला तहन तऽ आइ अपन श्रोता बहिन सबके कजरीके आनन्द लेती, तऽ आइ तऽ सब गोटाके आर ऊपरसँ दुगुना आनन्द हेतनि,
1: बेस
0: तऽ सुनवा दै छनि अपन श्रोता लोकनिके ई कजरी
1: सुनैत।

0: तऽ लाल बहिन अहाँ जे कहलहुँ जे कि एकदम जेहने समय तेहने गीत नाद अपन बहिन सबके सुनाएब,
1: ओहने झमकौआ गीत। आ देखियौ बदरा तऽ आइ तऽ नहि धोखा देलक, जहिना आइ बदरा बादल जेना देखबै छलए तहिना आइ झमकि कऽ खूब नीक सब बरखा भेल आ सबके मोन आनंद भऽ गेल।
0: हमरा की बुझ पड़ै छलए रोज दिन मेघ लागैए पानि नहि होइए, तऽ कहीं आइयो तऽ मेघ आबि कऽ पानि नहि बरसत,
1: वएह मने नुक्का छिप्पी खेलायत से अहाँके होइ छलए, मुदा आइ से नहि केलक।
0: तऽ चन्द्रिका कुमारीके गाओल अपना सब ई कजरी अखन सुनेलो अपन श्रोता लोकनिके बहिन सबके।
1: आ देखियौ मोनी बहिन, जहन बरखा होयत तहन समय पर धान रोपायत तहन ने घरो आंगनमे कथीमे खुशहाली होइ छै, जहन सुख समृद्धि रहै छै, धान पान सँ जहन घर भरल रहैए तऽ कतेक अपना सबके समय बचैए, ओहिमे कखन धान पसारू, कखन उठाउ, कखन समेटू, कखन कोठीमे राखू, कखन चाउर फटकू, तऽ कतेक रास काज रहैए मोनी बहिन जे अपना सब ओहिमे घुरियाएल रहै छी। आ बहिनो सबसँ दू टप्पी करब से नहि होइए, तऽ जहन एहन जहन बरखाके समय अइ, एहन जहन किसान भाइ लोकनि रोपता खेत आ अन्न होयत तहने ने घर आँगनमे खुशहाली रहब।
0: एहिमे लाल बहिन एकटा आओर गप हम कहऽ चाहै छी अहाँके, जे देखियौ सब चीज बहुत नीक अछि, समय बड़ नीक अछि, एकर आनंद तऽ लिअ मुदा अपन स्वास्थ्यके ध्यान राखैत। ई जे मौसम बदलल यए, कतेक बहिन सब तऽ आइ भिजलो हेता, हमहूँ भिज गेलहुँ, मुदा आइ भिजैमे की होइ छै सर्दी खाँसी बड़ जल्दी लागि जाइ छै, तऽ अपन सबके जे स्वास्थ्यके केना रक्षा हैत, केना ठीकसँ खेनाइ पिनाइ हैत आ केना कऽ अपना सब सर्दी खाँसीसँ बचब, एकर ध्यान, कियाकि अपन स्वास्थ्य सबसँ पहिले।
1: हाँ तऽ ई कहब देखियौ, जहन आइ मेघ लागल रहए तऽ जे बहिन सब भिजलनि तऽ मे बहिनो सबके तऽ गलती छनि, छत्ता लऽ कऽ किया नहि
0: निकलली,
1: छत्ता लऽ कऽ निकलबाक चाही ने, जहन देखलियै मेघ लागल छै तहन तऽ छत्ता नहि लेलहुँ, तऽ हमरो तऽ गलती कतौ नहि। तैं बहिन सब अपन खेनाइ पिनाइ स्वास्थ्य पर ठीके अहाँ कहलहुँ ध्यान रखती, किया तऽ उहे तऽ घरके रीढ़ छथि, जब ओ स्वस्थ रहती तऽ आन सदस्यके कोना देखरेख करती। ताहि दुआरे पहिने तऽ अपने स्वस्थ रहू आ तहन बाकी जे धियापुता बूढ़ बुढ़ानुस जे घरमे छथि सबके समय पर दियौन।
0: की
1: आब हमर सबके

0: कार्यक्रममे बेर भऽ गेलै प्रायोजित कार्यक्रमके मोनी बहिन,
1: तऽ आब अपना सब घर आँगनमे सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस,
0: तऽ सुनी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले 9155588889155588888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
3: हाँ।
4: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
3: है, जानकारियों का ही अभाव है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स है ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
3: जी।
4: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
3: जी।
4: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
3: जी,
4: है
3: जी।
4: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है, तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
3: जी एक बात बताइए, बैचलर

0: फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
0: तो
1: नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
0: सही।
1: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जो आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में। अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
0: सही सही सही बात।
1: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
0: सही बात है।
1: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है कोई भी विषय हो। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
0: बिल्कुल नहीं।
1: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
0: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर एन

0: ही प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?

0: लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है, आज भी लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888। और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी,
1: फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
2: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्रीराज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का?
2: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
2: जी,
1: में
2: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
2: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
2: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
2: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
2: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
2: दोनों में सब कुछ सामान्य है, हाँ। सब कुछ समान है,
1: हाँ।
2: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
2: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
1: देना, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
2: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
2: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा, मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों, चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: तो लाल बहिन अपन श्रोता लोकन के अखन सुनाबी छलो है प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। आब इहे के संगे कार्यक्रम घर आंगन समेटवा के बेर सेहो भ गेल अछि।
5: तो एक समेटी आ एहिठाम कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी। तो सबसे पहले तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोग स्वागत करे छन आ नमस्कार करे छन।
4: एकदम स्वागत छन, नमस्कार छन। अखन तो किसान भाई सब बड़ प्रसन्न
5: आई तो हर सबके मन बड़ खनहन हेतन, क्या एहन जे पानि भेला

0: तो देखियो मोनी बहिन, काल्हि भिनसरमे हमर किसान भाई लोकनि जिनका बीया तैयार छनि बिचरा, ओ तऽ फटाफट रोपनीमे लागि जेता आ जिनका नहि छनि तऽ दोसरो जिनका जे नर्सरी लगबै छथि बीयाके तऽ किनो कऽ से लोक रोपनी कऽ लैया जिनका खेत तैयार छनि तऽ सेहो कऽ लेता, आ जिनका पछात खसेबाक बेर हेतनि खेत तैयार हेतनि बीया उपलब्ध हेतनि तऽ ओ पछात वला सेहो खसा सकै छथि। मने बहुत रास काज एहन छै जे काल्हि फटाफट किसान भाइ लोकनि ओहिमे लागि जेता आ आइ तऽ ओ सब खूब प्रसन्न हेता।
1: हेबाके भी छै। आ लाल बहिन, जखन गहूम के बाग होय, धानक बाग होय, कोनो खेती बाड़ी के बाग होय, ओहि समय मे उर्वरक के देखै छियै कतेक बेसी मांग भ जाइत अछि, आ ओहि मांग मे जखन किसान भाई के बेसी आवश्यकता रहै छै तऽ बाजार मे मिलावट वाला भेटर लागैए,
0: नकली भेटैया। तऽ अहाँ बहुत नीक गप उठेलहुँ हैं मोनी बहिन, आ नकली आ असली आ उर्वरक तऽ अहाँके देखियो कम या बेसी कने ने कने तऽ अपना सब उपयोग करिते छी, ओना तऽ जैविक खाद के बेसी करै छी लेकिन कने ने कने देबऽ पड़ैया एहिमे, तऽ एहिमे ई ध्यान रहै जे नकली से हम नहि कीनी असली के, तऽ ओकरा केना चिन्हबै, एहि लेल से किछु मतलब एहन छै जे अपन
1: किसान भाई सबके सजग रहऽ पड़तै
0: कि केना चिन्हता
1: उर्वरक के कोन तरीका से चिन्ह। एकटा जेना कि आब यूरिया के लो लियो, तऽ यूरिया एकदम साफ दाना होइए, चमकदार होइए,
0: गोल गोल दाना होइए
1: एक समान, आ पानि मे पूरी तरह से घुल जाइए आ छूला पर एकदम शीतल लागत। आ लाल बहिन, अपन किसान भाई सब जनैत हेता जे गर्म तावा पर ई पिघल जाइत अछि,
0: उड़ जाइए,
1: आ जखन आँच के तेज कऽ देब तो एकदम कोनो अवशेष नहीं बचत,
0: पूरा उड़ जाते,
1: ई असली यूरिया के पहचान अछि। तो किसान भाई सब जरूर से चिन्ह कर करथिन। आ सुपर फास्फेट ई एकटा सख्त तक सख्त दानेदार भूरा बदामी युक्त रंग के युक्त रहैए, आ 900 आसानी से ई नै टूटे वाला उर्वरक होइत
0: अछि, कठोर होइए,
1: ई जे छै चूर्ण रूप में सेहो बाजार में उपलब्ध होइत अछि। ई दानेदार उर्वरक के जँ गरम कयल जाइत अछि तऽ एकर दाना फूलित नहि अछि, जबकि DAP आ आन कॉम्प्लेक्स के जे दाना अछि से फूल जाइत अछि। तऽ एक चीन जेथिन किसान भाई, सुपर फास्फेट कोन अछि आ DAP कोन अछि,
0: कोन नकली है कोन असली है, ओकर पहचान से एहि तरह भऽ जेतनि। कहबाक ई तात्पर्य जे कोनो जे उर्वरक के उपयोग करै छी तऽ किसान भाई लोकनि तऽ मने सदैत करै छथि, तँ ओ चिन्ह कऽ करबाक चाहिए, जँ अगर खराब दैए नकली दैए तऽ ओ कोनो लाभ नहि देत फसिलमे।
1: आ जिंक सल्फेट के गप करी तँ जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट प्रमुख मिलावटी रसायन होइत अछि, भौतिक रूप से समानता के कारण असली नकली के चिन्हनाई बड़ मुश्किल होइत अछि लाल बहिन। आ DAP के घोल में जिंक सल्फेट के घोल के मिलेला से थक्का घना अब छेक बनि जाइत अछि, जे मैंग सल्फेट में एना नहि होइत अछि, एकर ध्यान किसान भाई अवश्य रखता। जिंक सल्फेट के घोल में पातर कास्टिक के घोल मिलेला पर उज्जर मटमैला मार जेना होइए एहन अवक्षेप बनि जाइत अछि, जाहिमे गाढ़ा कास्टिक के घोल मिलेला पर अवक्षेप पूर्णतः घुलि जाइत अछि। जँ जिंक सल्फेट के जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट हुए तऽ अवक्षेप नहि घुलत, एकर ध्यान अवश्य रखबाक चाही। आ पोटाश खाद के गप करी तँ उज्जर होइत अछि कनाकार, आ पिसला पर नून आ लाल मिर्चाई जकर मिश्रण बुझाइत अछि, एकर घिसबे तखन एकर कण नम करला पर आपस में सटै नहि यऽ, पानि में घोरब जखन तँ खाद के लाल भाग पानि के ऊपर तैरऽ लागत,
0: छतय लगैए,
1: पोटाश के गप अखन हम
0: तँ कहबाक मतलब ई तात्पर्य छै जे उर्वरक के व्यवहार अहाँ जे करै छी तँ ओकरा चिन्ह कऽ करू, आ जे असली अइ तहन ओकर व्यवहार करू, आ जँ नकली छै बाजारमे तऽ ओकरा अहाँ नहि कीनू आ ओकर व्यवहार नहि करू, किएक तऽ ओकरा पौधा पर ओकर से लाभ नहि हैत, ओहिसँ हानि हैत जँ अहाँ खराब उर्वरकके उपयोग करै छी। तँ एहि तरहें से देख रेख कऽ किसान भाइ लोकनिके से फसिलमे उर्वरक व्यवहार करबाक चाही,
1: चिन्हकऽ
0: मिसाइकऽ, ई नहि जे सीधे गेलहुँ आ लऽ लेलहुँ बिना बुझने, तऽ से नहि, जहन चिन्ह बिसाइकऽ करब तहन उत्पादन निक हैत।
1: छैहे कि अपन किसान भाई एतेक मेहनत करै छथिन तँ एतेक मेहनत से जखन चिन्हल रहतनि किसान भाई के तखन आ

0: पाइयो लागि जाइ छै
1: ने कि पाइयो लागि जाइ छै त सोहब के छै ने तै बेर पर से हेबाक चाही। आ देखियो जहन उत्पादन नीक होइ छै मोनी बहिन तब मोन खनहन रहै छै, मोन प्रसन्न रहै छै, किया तऽ जहन जहन काज नीक सँ चलत तऽ मोन प्रसन्न रहत। आ मोन प्रसन्न होइ छै तऽ गीत नाद सुनत के मोन होइते छै। आ ओहोमे आइ के मौसम एहन अइ जे आइ तऽ निश्चित रूप सँ अपन किसान श्रोता लोकनि के एकटा कजरी सुना दै छियनि।
0: बेस तऽ सुनैत छी अपनो सभ।

0: विभा सिन्हा के गांव ई कजरी एकदम एकदम किसान भाई सब तो झूम अपनो सब झूमल लगल लाल बहिन
1: ई त झुमा देलक आ देखियो रिमझिम फुहार त पड़ते सबनमा एल ने लेकिन आवा वाला त ये त आवा वाला का त स्वागत पहिने से न कैल जाय छे
0: कि
1: मुनि बहिन त ठीक है गीत बहुत निक लागल आशा करै छी हमर श्रोता लोकन के सेहो खूब निक लागल हेतन आ देखियो जन गीत नाद होइत रहै छे तखने कोनो काजो करबा में मोन लगै छे
0: अपन किसान भाई सब न बुध दिन के बाट जो होइ छथिन कि कखन लाल बहिन अपना सब ऐब आ किसान भाई के लिए कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना वाचन आ संकलन छन सविता कुमारी के प्रस्तुति असद दाऊद के तो सुनित छी अपना सब कृषि सूचना
1: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम लाल बहिन उपस्थित छी नव नव जानकारी संग गन्ना क्षेत्र विस्तार के संबंध में समाहरणालय सभागार में डीएम कौशल कुमार के अध्यक्षता में चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र विस्तार के लऽ कऽ जिला अभियान समिति के बैसार भेल रैयाम चीनी मिल के संचालन के तैयारी ओ एकरा लेल आवश्यक गन्ना उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के रणनीति पर समीक्षा कयल गेल सहायक निदेशक ईख विकास कहलन जे एकटा चीनी मिल के सफल संचालन के लेल लगभग 30,000 एकड़ क्षेत्र में कुसियारक खेती आवश्यक होइत अछि एहि लेल व्यापक जन जागरूकता व किसान सहभागिता अभियान चलेबाक निर्णय लेल गेल डीएम अधिकारी के निर्देश देलन जे कि गन्ना क्षेत्र विस्तार के लेल संभावित गांव के शीघ्र चिन्हित कयल जाय स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि माछ पोसनिहार किसान भाई बहिन लोकनि के वास्ते सब पंचायत में बनत मछली उत्पादक समिति राज्य में पंचायत स्तर पर माछ उत्पादक समिति होयत सब 8,053 पंचायत में मत्स्य सहकारी समिति बनेबाक ले डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग प्रस्ताव तैयार कयलन अछि जे चरणबद्ध तरीका सँ सब पंचायत में सरकारी मत्स्य सहयोग समिति बनत जाहि सँ राज्य में माछक उत्पादन बढ़त ओ माछक उत्पादक किसान लोकनि के आमदनी सेहो बढ़ जेतनि संगे लोक के कम दाम पर स्थानीय ताजा माछ भेटतनि विभाग एहन लक्ष्य रखलन अछि जे बहुत जल्दी 1,000 सँ बेसी पंचायत में मत्स्य सहयोग समिति के राज्य कैबिनेट के स्वीकृति दऽ देल जायत पंचायत मत्स्य सहयोग समिति के सहकारिता विभाग के द्वारा निबंधन भेटत विभाग सहकारिता विभाग सँ एकटा एकरा लेल पंचायत स्तर पर समिति बनेबाक लेल NOC देबाक आग्रह केलन पंचायत मत्स्य सहयोग समिति के उपनियम बनाओल जायत एहि के आधार पर पंचायत मत्स्य सहयोग समिति के संचालन होयत आ मत्स्य सहयोग समिति सँ संबंधित पंचायत के सब माछ उत्पादक एहिमे शामिल हेता आ समिति के माध्यम सँ माछक बिक्री होयत एतबे नहि किसान भाई लोकन बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि एहि योजना सँ लाभ उठेबाक वास्ते योजना में आवेदन करय सँ पहिने किसान भाई बहिन लोकनि के गुड़ लाइसेंस होयब अनिवार्य अछि प्रथम चरण के अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 तक गुड़ उत्पादक इकाई के वास्ते किसान लोकनि सँ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कयल जा रहल अछि।

0: गन्ना किसान निवेशक द्वारा गुड़ इकाई के स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान के प्रावधान सेहो अछि। प्रतिदिन पेराई क्षमता वाला इकाई के ओकर पूंजी लागत के 50% तक अनुदान के प्रावधान अछि। 520 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता के वास्ते बेसी से बेसी 6 लाख आ 21 से लेकर 40 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता के वास्ते 15 लाख तक आ 41 से लेकर 60 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता के वास्ते 45 लाख तक एकर देल जायत। घर घर जाकर संपर्ककर्ता कृषि सलाहकार जाले प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सभागार में BAO प्रेमनाथ के अध्यक्षता कृषि समन्वयक ओ किसान सलाहकार के बैसार में खरीफ मौसम के लेल सरकारी अनुदानित धान बिया के उठाव पर चिंता जताओल गेल। BAO सब कृषि समन्वयक ओ किसान सलाहकार के गांव गांव ओ घर घर जाकर किसान लोकन से संपर्क करबाक लेल कहल गेल। ओ अनुदानित दर पर उपलब्ध सरकारी बिया लेबाक लेल कहल गेल। बैसार में BAO कहलनि जे प्रखंड के किसान के लेल हाइब्रिड धान के 4 क्विंटल 65 किलोग्राम ओ हाइब्रिड मकई के 1 क्विंटल 56 किलोग्राम बिया उपलब्ध अछि। BAO कहलनि सब किसान के समय पर सरकारी बिया पठाएब विभाग के काज अछि, एकरा वास्ते जागरूकता अभियान कयल जाए। किसान लोकन सेहो सरकारी बिया वितरण पर सवाल उठेला। ओ कहला जे सरकारी बिया जखन बेर पर उपलब्ध होयत तखने हमरा सबके लाभ होयत, कारण जब बेर पर नहीं बिया उपलब्ध होयत तो नर्सरी ओ रोपनी दुनू प्रभावित होयत। बस आब आइ एतबे।
1: अखन अपना सब सुने छलो किसान भाई कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना वाचन आ संकलन सविता कुमारी के आ प्रस्तुति असद दाऊद के छलन आ लाल बहिन अपन किसान भाई के एतिक नीक नीक जानकारी दिलियन। अवश्य सब लाभ भेटते एहि जानकारी से, संग संग जानकारी के मनोरंजन सेहो बड़ आवश्यक है।
0: निश्चित रूप से मनोरंजन जहन होइ छै ने तहने कोनो काज में की कहलो है, बिना गीत नाद के तो कोनो काज में आगू बढ़ के मोने नहीं है। आ जहन गीत संगीत होत रहे छे तो सब काज दुगुना जज्बा से हम मोनी बहन कह सके छी। आ किसानों भाई लोकन योजना बनबे छत चाहक संग जे भिनसर में हमरा की करबाक छ, तो सुनवा दे छी अपन किसान भाई लोकन के एकटा सुंदर सन लोकगीत।
1: बेस्त सुनी।

0: तऽ अखन अपना सब एतेक सुंदर श्याम मोहन मिश्रक गाओल गीत सुनलहुँ।
1: हाँ, एक झलक कनि मौसम तऽ कहि दियौ अपन श्रोता लोकनि।
0: एकदम मौसम के जानकारी जे अछि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जे आयल अछि मौसम के जानकारी, जे पूर्वानुमानित अवधि के दौरान उत्तर बिहार में अनेक स्थान पर 10 से 12 जुलाई के आसपास मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज अन्हर रह सकैत अछि, एकर संभावना छै। पूर्वानुमानित अवधि में जे छै अखन हल्लुक से मध्यम मेघ, घनगर मेघ आबि सकैत अछि। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि। आ भिनसर में सापेक्षिक आर्द्रता भिनसर में 80 से 85% आ दुपहरिया में जे छै से 45 से 50% रहबा के अनुमान अछि। औसतन पूर्वा हवा जे छै 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलबाक अनुमान अछि।
1: तऽ हमर सबके मौसम पूर्वानुमान, एक सँ हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भऽ गेलै, एकरा समेटी किसान भाई लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार मुनि बहिन।
0: नमस्कार लाल बहिन।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: राज्य मंत्री परिषद ने पाटलिपुत्र हरिहरनाथपुर मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश होने से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों को की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार पाटलिपुत्र हरिहरनाथपुर मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के विस्तार और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कैबिनेट ने टाउनशिप के सुनियोजित विकास के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चयन को स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और नए बेली ब्रिज के निर्माण के लिए 126 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए। कैबिनेट ने पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया तक प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की स्वीकृति दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को नामित किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा। मंत्री परिषद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के विस्तार के लिए दानापुर के भुसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर 79.84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल से आधुनिक मत्स्य अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अंकेक्षण के अंगीकरण को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा 7 निश्चय के तहत संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका मंत्रालय कम बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश वाले बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की निगरानी की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि सरकार किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: मित्रों, अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है और कल तक 24% बारिश कम हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के कारण स्थितियां बदली है। हम 178 जिलों पर अभी नजर रखे हुए हैं और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में बिहार लोक सेवा

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार।

0: व आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्यक्रम भी जल्द जारी किया जाएगा।
1: टीचर ट्रांसफर नीति लागू है, विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में, और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है और एक शेड्यूल जारी होगा, उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे कि 25 जुलाई तक हम TRE4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में 927 पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना और पदवार विवरण शीघ्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर पूरी बात रख दी है। उन्होंने बताया कि अगले 2 महीने के अंदर उन पथों को चिन्हित कर लिया जाएगा जिस पर टोल टैक्स लगेगा।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल पीले नंबर प्लेट यानी व्यावसायिक व्हीकल पर ही टैक्स लगेंगे और जितने भी सफेद नंबर प्लेट हैं यानी नॉन कमर्शियल उस पर नहीं लगेंगे। और आने वाला 2 महीना में सड़कें चिन्हित भी हो जाएंगी कि कहां टोल लगना है।
0: भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभवाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

0: वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब राजस्व विभाग के सभी काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी।
2: अब जो भी कार्य संपादित होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही हेरा फेरी होने की संभावना रहती थी, इसलिए हम लोगों ने सभी तरह के ऑफलाइन पर रोक लगा दिया। कुछ जिला में गलत सिग्नेचर करके कुछ पेपर को उपयोग किया जा रहा, इसलिए अब ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर सारे काम ऑनलाइन राजस्व विभाग के होंगे।
0: जनता दल यूनाइटेड ने बिहार प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से मृतक के परिजन को अंतरिम राहत के रूप में मुआवजा देने पर विचार करने को भी कहा है। हालांकि मुआवजे की राशि तय नहीं की गई है और इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत का भुगतान बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और इससे मामले की जांच या अंतिम निर्णय प्रभावित नहीं होगा। पूर्वी चंपारण जिले के भोपतपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को 1,26,00,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 25,00,000 रुपए के टॉय नोट, 13,00,000 रुपए नकद, सोने के 38 बिस्किट, हथियार, गोलियां और एक वाहन बरामद किए गए हैं। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8,00,000 रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अभियान चलाकर 60 लीटर नेपाली शराब के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 2,55,000 रुपए लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार।
1: भारतीय नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक यूक्रेनी महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। महिला पर वैध यात्रा और आव्रजन दस्तावेजों के बिना भारत में रहने तथा हरपुर सीमा के रास्ते अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 2000 बैग उर्वरक जब्त किए गए हैं तथा नकली डीएपी खाद बनाने के गोरख धंधे का भी खुलासा हुआ। मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। मोतिहारी में जिला उर्दू भाषा कोषांग की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद साजिद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। सभी उर्दू कर्मियों को समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, नियमित विद्यालय भ्रमण करने, सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में अनुवाद कर सूचना पट पर प्रदर्शित करने तथा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा मैदान से जल्द छोटे विमानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत मोतिहारी को क्षेत्रीय हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। विशेषज्ञों की टीम हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण कर चुकी है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 25 एकड़ भूमि पर हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
0: और अब प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर खाद्यान्न वितरण सेवा शुरू की गई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर प्रखंड में इस पायलट परियोजना का शुभारंभ करते हुए पात्र लाभुकों को उनके घर पहुंचकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उनके घर तक पहुंचाना है। जिले में 14 अगस्त तक चलने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वित प्रयास से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील आबादी की 100% स्क्रीनिंग टीबी के लक्षण वाले लोगों की समय पर जांच तथा निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 24 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 7 से 21 जुलाई तक विभिन्न प्रखंडों में मेगा आउटरीच शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि योजना से जुड़े लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

0: जा सके। जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में गैस एजेंसियों के स्टॉक आपूर्ति और लंबित बुकिंग की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। नमामि गंगे मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को गंगा संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। जिले में विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार, स्मार्ट जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा पंचायतों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। हाजीपुर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में सौर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनी गई, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 31 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को वार्षिक अनुग्रह राशि प्रदान की गई। वहीं जिले के विभिन्न पंचायतों में पहली बार पंचायत दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा नशा मुक्ति और शराबबंदी को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चला गया।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले की हलचल।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।
3: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। ये पहला गाना मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुनिए, गौहर कानपुरी का लिखा हुआ। संगीत उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी।

अब जो गाना आप सुनेंगे उसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है अनजाना।

ये गाना सुनिए, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, युगल स्वर मुकेश और लता मंगेशकर का, तथा फिल्म का नाम है मिलन।

आप सुने थे अभी राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत था, फिल्म थी अनपढ़ और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इससे पहले जो आपने गाना सुना था वो युगल स्वर में था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म थी बैराग। अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन बंधु लोग

आजुक कार्यक्रम में जखन हमरा लोकनि समवेत भऽ गेल छी तऽ सबसँ पहिने कार्यक्रमक जे मुख्य आकर्षण अछि ओकर चर्च कऽ लै छी हमरा लोकनि। आइ हमरा लोकनि अपन एहि कार्यक्रममे एक गोट कथा सुनब। कथाकार हेता वशिष्ठ नारायण झा, मैथिली साहित्यमे जिनका हमरा लोकनि ऋषि वशिष्ठके नामसँ जनैत छियनि, पढ़ैत छियनि। जखन हमसब कथाक चर्च करैत छी तऽ निश्चित रूपसँ मोन पड़ि जाइत अछि अपन नेनपनमे सुनल खिस्सा सब। ई बात निश्चित अछि जे अपना सब ओहिठाम खिस्सा कहबाक एक गोट सुदीर्घ परम्परा रहल अछि आ से अधुकालसँ ई परम्परा अपना सब ओहिठाम चलैत आबि रहल अछि। ओना परम्पराक जे गप केलहुँ तऽ अपन कार्यक्रममे सेहो किछु परम्परा रहल अछि जकरा हमरा लोकनि निमाहैत अयलहुँ अछि। आउ ने ओहि परम्पराक अनुरूप, मने गीत नादक जे परम्परा अछि ओहि अनुरूप पहिने हमरा लोकनि सुनैत छी ई गीत, फेर गप करब।

0: महाकवि विद्यापतिक ई गीत रचना एखन हमरा लोकनि संवेद स्वर मे सुन रहल छलहुँ। एहि गीतसँ पहिने हमसब गप करैत छलहुँ अपना सब ओहिठामक जे खिस्सा कहबाक परम्परा अछि ओकर। ई गप तऽ निश्चित जे अपना सब ओहिठाम खिस्सा कहबाक सुनबाक वस्तु बुझल जाइत रहल अछि आ प्रायः सबगोटे खिस्सा कहबाक जे कला ओहिमे निष्णात आ तैँ खिस्सा सुनबाक आनंद बढ़ि जाइत छल हमरा सभक। कोनो कथाक प्रस्तुतिकरण जे छैक ओहिपर ओहि कथाक सफलता असफलता सेहो निर्भर रहैत अछि। बंधु लोकनि अपना सब ओहिठामकर जे संस्कृति रहल अछि ओहिमे सेहो ई खिस्सा सब अपन स्थान बनौने रहल अछि आ नेनपनेसँ हमसब ओकर आनंद सेहो लैत रहलहुँ अछि। मैथिली कथाक विकास यात्राक जतऽ धरि गप अछि तऽ ई लोक कथा सभक समृद्ध मौखिक परम्परासँ आरम्भ भऽ कऽ आधुनिक कथा धरि पहुँचल अछि। आजुक समयमे जे मैथिली कथा सब लिखल जा रहल अछि ओकरा जखन हमरा लोकनि देखैत छी पढ़ैत छी तऽ ओहिमे बदलैत परिवेशक जे व्यथा कथा सब ओसब सेहो देखना जाइत अछि आ ई हमरा सब लेल प्रसन्नताक विषय अछि जे कथा नीक मात्रामे लिखल जा रहल अछि पढ़ल सेहो जा रहल अछि। कथा गोष्ठी सभक आयोजन सेहो भऽ रहल अछि ठाम ठाम जाहिसँ कथा लेखन लेल नव पीढ़ीक जे लोक सब ओ सब प्रेरित सेहो भऽ रहल छथि। बंधु लोकनि मैथिली कथा साहित्यक जे गप अपना लोकनि केलहुँ तऽ एखुनका समयमे बहुत रास कथा सब लिखल जा रहल अछि। हाँ, प्रत्येक बरख बहुत रास कथाक पोथी सब प्रकाशित भऽ रहल अछि। देशकाल ओ परिस्थितिक अनुरूप कथा लेखन होइत रहल अछि आ कथा साहित्यक यात्रा निर्बाध रूपें अपन डेग आगाँ बढ़ैत जा रहल अछि। आउ ने हमहूँ सब एक डेग आगाँ बढ़ैत छी आ सुनैत छी वशिष्ठ नारायण झाक कथा, शीर्षक अछि अंगैठी मोर।
1: लुकझुक साँझ भऽ गेलै। मलभुगिया अल्युमिनियम वाला डेगची मे पानि भरबाक लेल कॉल पर गेल। पानि भरबाक लेल टोल भरिक जनानीक जमावड़ा छलैक। एतेकटा टोल आ एकमात्र कॉल। साँझू पहर आ नहेबा धोबाक बेरमे अहिना भीड़ जुट जाइत छलैक। मलभुगियाक जीह जेना कतौ टंगायल छलै ओकरा लेखे कोनो भीड़ भाड़ धनि सैन। ओ कोना ठाढ़ रहल आ कोना अपन बेर पर पानि भरलक कथुक सोह नहि रहलै। ओ पानिसँ भरल डेगची उठाकऽ बामा भाग डाँड़ पर रखलक। ओ सोझे आँगन पहुँचल आ 10 वर्षक बेटीके शोर करय लागल। अनरी छै गे अनरी, कतौसँ कोनो उतारा नहि अयलै। ओ अक्षल सन बाजि उठल, कतय मरि गेलैं? अनरी अपन दुनू भाय आ छोटकी बहिनके लऽ कऽ आँगन आयल। मलभोगियाक तामस जेना एकाएक शांत भऽ गेलै। ओ अनरीसँ पुछलक, गे बाबू की कहलकौ? भोज हेतै, सब गोरा जेबै खाय लागी। माय गे, रसगुल्लाके भोज है कहाँ दून? छोटका भाय नींदे बाजि उठल, हैं रसगुल्लाके भोज होइ है। मलभोगिया दुनूक गप सुनिकऽ बाजल, हाँ रे ठीके रसगुल्लेके भोज है। नींदे प्रसन्न भऽ पुछलक, एकर मतलब जे जते खाए तते खुओतै? से नहि देतै तऽ भोज की भेलै? अनरी जवाब,

देलक। मलभुगिया चूल्हा लग जारनि काठी ओरिया कर रखलक। अंडरी पूछि देलके, भनसा तैयो बनेबही तो की करियौ? की कहलको बौ, भनसा नहीं बनब? से तो नहीं बोलले, एतबा कहलक जे आइ चलिहें सब गोरा भोज खाइले, पूरी तरकारी आ रसगुल्ला जे जत्ते खा सके। मार बढ़नी ओकरा अहिना ती रहे है, बात के छिल छिल के बोलतो। मलभुगिया आँच पजारबाक लेल बैसल, चूल्हाक मुँह में करची आ पात सब लगवेत बाजल, अपने टाले एक पैली सीधा लगा दी छे, किए तोरा ले हम सब लेन ले नहीं है बहु, आब तो मुनहर साँझ भ गेले, बहु कखन तोरी कौत? मलभुगिया चूल्हाक मुँह से पजार बाहर कह दिल्क आ सब धियापुता के लक घर में बैस गए। ओ कतेको बितलाहा भोज सभक खिस्सा धियापुता के सुना रहल छल, मुदा ध्यान छले इनरे पर टांगल। धियापुता सब खिस्सा पिहानी सुनैत ओंघाय लागल, ताबते में इनर आंगन आबि गेल। मलभुगिया जेना डेरा उठल, माय गे कोना चोर नहित चुपचाप अंगने में घुसि गेले, तो कोतवाल नहित पहर दैत अबितिए? ढेनमा ढेनमी सब सुति रहले, सुतोक नहीं तो की करो? ई अले अपने भोज खा के अधरतिया में, तो होइ है जे एखन साँझे है हम असगरिये भोज कोना खा लेती, क्या दिन से धियापुता के जीह टांगल है। मलभुगिया कोरैला बच्चा के नीचा में सुता कर ठोकित बाजल, तो आब जेतै? जेबै से खोजते तब ने? इन्नर स्वाभिमान भरल स्वर में बाजल, ओ एकरा सबके खोजतै? नहीं खोजते तो नहीं जेबै, बिना बजाओल एको गोरा औतै आए? मलभुगिया डिब्याक मामिर खर से झाड़ित बाजल, आ जँ नहीं अबै ई तो हमहूँ चूल्ही में पजार नहीं दिलिए। इन्नर आश्वस्त सन मुद्रा में बाजल, कोई बात नहीं, देखो ने वो एबे करते, पाँच दिन से लगातार काम कर रहल छिए, से कोना के भूलते? मलभुगिया इन्नरक लग में बैस गेल, तखन एखन की करियो? इन्नर हफियात आ अंगैठी मोड़ करैत बाजल, करते कि भनसा भातक चिंते नहीं है, ताबत कनिक देह मोड़ लैत छी, बड्ड थकावट है, लाव देह दबा दैत छी। ताबत अनरी उठि बैसल, बाउ रसगुल्ला खा लेलहक? नहीं गे बौआ, एखनी बोलाब नहीं अल, एखनी सुत, जाय बेरी उठा देव। इन्नर दुलार से बाजल, अनरी फेर सुतवाक प्रयास करते हफियात नींद पड़ गेल। इन्नर सेहो अलसायल जा रहल छल, मलभुगिया झुकझुक खसैत छल। इन्नर मलभुगिया के झुकैत देखि ओकरा सुति रहबाक लेल कहलके, ताबे तऽ नींदे टांग पसारलक आ डिबिया ओंघरा के खसि पड़ले, भक भक के पसाही धो लेलके। मलभुगिया आ इन्नर धड़फड़ा के उठल, मलभुगिया जोर जोर से डिबिया के फूकऽ लागल, उम्हर से इन्नर सेहो साधि के फूक मारलक आ डिबिया मिझा गेल। इन्नर एम्हर उम्हर हथोड़ि के सलाई तकलक, मलभुगिया लोहच के बाजल, खरहू सब केने के सलाई राखि दिलके? इन्नर अलसैले स्वर में बाजल, छोड़ो ने एखन सलाई की होते? इन्नर आ मलभुगिया के सेहो आँखि लागि गेले, बाहर कथुक खरखरेबाक आवाज अले। इन्नर धड़फड़ा के उठि बैसल, ओ दबले स्वर में मलभुगिया के उठबैत बाजल, हे उठोक ने, भरिसक अले ये बोलब। मलभुगिया उठि के बैसल, ओ कान पाति के खरखरेबाक आवाज सुनैत बाजल, मार बढ़नी तो बकरी टाट में रगड़ी है। इन्नर के जना नौ मन पानि पड़ गेले, अच्छा सुतौक, एति राति बीत गेले, हे सुनौक, आब जे उतै बोलाब त कनेक भरिएते, कहते जे ए भोरहरिया में आब कोना जायत? मलभुगिया उदास संस्वर में पूछलके, त ठीके ने जेतै? एह जेबै नै, ओहिना कनेक तड़क भड़क देते कि? अनरी सुतले में चेहैत बाजल, नहीं लेबै, आब नहीं खेल हैत, आइ अछौ भ गेल, नहीं हो बाओ? इन्नर हंसैत बाजल, बिस्नाई है अनरी, सपनों में भोजे खाइ है। मलभुगिया करोट बदलैत बाजल, मार बढ़नी आइ भरि दिन सब खरहू भोजे भोज करे है, भोजे भोज करे है तो खेतै अड़ा क एकरो ले लौले अते भरि तौ? मलभुगिया हंसैत बाजल, बोलब एते तब ने, हमरा ले की भरि तौ अनते, अपने खा ने पहिने, अच्छा आब सुत दो। मलभुगिया हंसैत करोट बदललक, सुत ने, भूखे पेट में बिलाड़ि कूदे है तो नींद कोना होते? घर में चुप्पी पसरि गेले, खाली सांस लेबाक आ छोड़बाक आवाज सुनैत छले। रातिक अंतिम पहर भ गेले, टोल पर कुकुर भूकब शुरू कऽ दिल्के, भरिसक कोनो बाट बटोही अभरल होय। मलभुगिया चेहा के उठल, ओ इन्नरक देह दुमि के उठबैत बाजल, हे उठोक ने, बोलब अबे है, सुनोक ने, कुत्ता लगे है। इन्नर ओंघैले बाजल, सुत दे, आ भोरहरिया में कतौ जेबै? हे उठोक ने, की कहते मालिक जे बलू भरियाबै है? कुकुर भूकब धीरे धीरे दूर दिस जात सुनै पड़ले। मलभुगिया साहस जुटबैत बाजल, अपने से चलि जेते से नहीं होते? इन्नर डपटल सन स्वर में बाजल, अच्छा सुत, बेसी जीह नहीं नमराब। मलभुगिया मोन मारि कऽ सुति रहल, कनिके कालक बाद भोर भ गेलै, धियापुता सब उठि गेलै, नींदे आँखि मिरते पूछि देलके, बाउ

0: हमरा लए रसगुल्ला लेलहक? अनरी दुलारे छिड़ियात बाजल, हमरो नहि लऽ गेलै भोज खायल। आ छोट छोट दुनू बच्चा सेहो इन्दर दिस तकैत छलै, जेना ओहो कहैत छलै हमरा लए रसगुल्ला नहि। इन्दर जेना मोने मोन हिसाब लगौलक, हाँ गे एखनी जेबै आ तोरा आओर लए रसगुल्ला कीन कऽ अनबो, खइहे जे खेबे से। निंदे दौड़ल माय लग, माय गे बाऊ रसगुल्ला कीनऽ जेतै? मलभोगिया पानि लऽ कऽ ओकर मुँह कान पोछऽ लागल। ताबतमे बाहर सड़क पर सँ सुदर्शन हाक देलक, इन्दर छ हौ, हौ इन्दर। इन्दर कान परक गमछा सरियबैत बाहर आयल। सुदर्शन उपरका मोने बाजि उठल, ए हो रातो सब भोजमे नहि गेलहक? हम तऽ तोरा तकैत रहिय। इन्दर चुप। सुदर्शन जेबी से रुपया बाहर कऽ इन्दर के देलक, भऽ गेल पाँचो दिनका मजदूरी। सैह ओतेक रसगुल्ला छुता गेलै, तोरा जेबाक चाही कि नहि हौ? एखन कनेक जल्दी आवह, सबटा ऐंठ काँठ ओहिना पसरल छै। इन्दर एकाएक बाजि उठल, आइ तऽ हम नहि जेब। किएक हौ? दोसर जग जेबाक है। से कोना हेतै, सौंसे घिनायल छै। ताबत निंदे दौड़ले आयल आ सुदर्शन के संबोधित कऽ बाजल, आइ बाउ जेतै बाजार रसगुल्ला कीनऽ। हाँ हौ, सुदर्शन भाव बदलैत बाजल, चलह ने, हमरे ओहिठाम तऽ रसगुल्ला फेकल छै। फेकलाहा नहि चाही मालिक, हमहूँ कमौआ छियै, बाल बच्चा के मनोरथ पूर करबै कि जाउ, आइ नहि होत हमरा बुते काम। सुदर्शन साइकिल घुमाकऽ बढ़ैत बाजल, हम तऽ कहबऽ जे चलितऽ हमरे ओहिठाम। इन्नर आँगन गेल आ मलभोगिया के चिकरलक, कतऽ गेलैक, लबौक तऽ डोलकी। इन्नर डोलकी लऽ बाजार विदा भऽ गेल आ धियापुता सब तृप्त भऽ खेल में मस्त भऽ गेल।
1: एखन हमरा लोकनि ऋषि वशिष्ठ के ई कथा अंगैठी मोर सुनि रहल छलहुँ। साहित्य अकादमीक बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त ऋषि वशिष्ठ एखन कथा लेखन में निश्चित रूप सँ सक्रिय रूप सँ लागल छथि। बंधु लोकनि, जखन हमसब अपन कथा साहित्यक गप करै छी, पहिने कहलहुँ जे कथा जे पहिने कम लिखल जा रहल छल, आब कमोबेश नीक लिखल जा रहल अछि, ओकर जे स्थिति ओ ठीक ठाक देखना जा रहल अछि, आ एहि सबमे निश्चित रूपसँ सहयोगी होइत अछि पत्र पत्रिका सब वा कथा गोष्ठी आदिक जे चर्च केलहुँ ओ सब। कने एक डेग आगाँ बढ़ै छी अपन कार्यक्रममे, पहिने ई महेशवाणी सुनै छी, फेर हमरा लोकनि गप करब।

स्नेहा झा गौल एहि महेशवाणीक बाद आब हमरा लोकनि चलब शब्द विमर्श दिस। मुदा शब्द विमर्श करबासँ पूर्व अपने लोकनिसँ एक गोट आग्रह। बंधु लोकनि, कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि? कार्यक्रमक प्रति अपने लोकनिक जे प्रतिक्रिया, अपने लोकनिक जे सुझाव, ओकर प्रतीक्षा रहैत अछि हमरा सबकेँ। अपने समयसँ बहुतो गोटे अपन सुझाव, अपन प्रतिक्रिया हमरा सब धरि पठबैत रहलहुँ अछि आ निश्चित रूपसँ अपने लोकनिक जे सुझाव ओ हमरा सभक सम्बल बनैत रहल अछि। तैँ अपने लोकनिसँ विशेष आग्रह जे अपन प्रतिक्रिया, अपन सुझाव हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ पठबैत रही। ओहुना 50 वर्ष भऽ गेल अछि अपन आकाशवाणी दरभंगाक आ एहि 50 बरखमे प्रतिदिन हमरा लोकनि एक संग जुड़ि कऽ कार्यक्रम करैत रहलहुँ अछि। अपने लोकनिक जे सुझाव ओ हमरा सबकेँ भेटैत रहल अछि आ तदनुरूप हमरा लोकनि अपन कार्यक्रमकेँ करैत रहलहुँ अछि। जँ पत्र द्वारा हमरा सबकेँ अपन प्रतिक्रिया पठबऽ चाहैत छी

एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमर सभक पिन कोड अछि 8460004। बंधु लोकनि अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया आ कि सुझाव हमरा सब धरि पठा सकैत छी। आ आब चलै छी शब्द विमर्श दिस। बरखाक ऋतु चलि रहल अछि निश्चित रूपसँ, ओना तऽ पानि कम भेल है, मुदा एहिसँ सम्बन्धित किछु शब्द सब, जेना एकटा शब्द अछि पानिवट। बरखाक पानि बहबाक जे बाट, नाली ई सब जे रहैत छैक, ओहि लेल हमरा लोकनि पानिवट शब्दके प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। आ जहन ओ पानि उमड़ि कऽ बाहर पसरैत अछि तऽ कहैत छी पलार बहब। माने उमड़िके बाहर पसरबा लेल, बहबा लेल हमरा लोकनि पलार शब्दके प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। आ पनियाब, पनियाब भेल पर्याप्त पानिसँ युक्त होयब, जाहिसँ धान रोपल जा सकय। एखन तऽ धान रोपनीक बेर अछि आ किसान भाई लोकनि ओहि पानिके प्रतीक्षा करैत रहैत छथि जे कखन खेत पनियात आ धान रोपल जा सकय, कदवा कयल जा सकय। एकटा शब्द अछि पनिहारी, लगातार वृष्टिवला जे समय, ओहि लेल पनिहारी शब्दके प्रयोग करैत रहलहुँ अछि हमरा लोकनि। आ पानिगर, पानिगर भेल अपेक्षाकृत अधिक पानिवला। तऽ ई छल आजुक शब्द विमर्श। आ अपने लोकनिसँ एकटा आओर विशेष आग्रह, जे एहन शब्द जकरा हमरा लोकनि पहिने तऽ खूब प्रयोगमे अनैत छलहुँ, आब किछु कम कऽ देलहुँ अछि, ओहन शब्दसभ सेहो जँ अपने लोकनि हमरा सब धरि लिख कऽ पठाबी तऽ ओकरा, ओहि शब्द सबके हमसब निश्चित रूपसँ अपन कार्यक्रममे सम्मिलित करब। तऽ एहि आग्रहक सङ्ग, एहि आशाक सङ्ग जे अपने लोकनिक सुझाव, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सब धरि अबैत रहत, आब अगिला भेंट धरिक लेल कार्यक्रमसँ हमरा, यानि राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबाक आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। 8:45 होने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनेंगे
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य

0: की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने ए.आर. रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब

0: से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और

0: इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्स्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्स्युक ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the

0: us, they say, we never even talked about it. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't like these people.
1: Trump's statement comes hours after the U.S. carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. The U.S. said the strikes were in response to Tehran's attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. Announcing the operation, U.S. Central Command CENTCOM said the strikes were conducted using precision-guided munitions and were aimed at degrading Iran's ability to threaten international maritime commerce. The Iranian military said coastal bases and civilian facilities were struck in the provinces of Hormozgan and Mahshahr. According to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, strikes also hit Bandar Mahshahr in southwest Iran. IRGC said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund IMF projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, released today, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. In sports, the 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइश परवाज की है। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकत दारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकत दारी की अहम बुनियाद है।

0: अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनीनो के मुमकिन असरात पर मुनक्किदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमुई बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी जिससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खरीफ फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 91 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मशवरा दिया कि वो बारिश में ताखीर के असरात कम करने के लिए कम मुद्दत में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलों जैसे मकई, बाजरा और मूंग की काश्त करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शदीद बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल और चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासिरा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से आज बातचीत की और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और केरलम के वजीर आला वी डी सतीशन से बात की। इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के वसी और मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली बहिर अरब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बकिया हिस्सों की जानिब आइंदा 2 दिन से 3 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने की खातिर मौसम साजगार है। आईएमडी ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली एनसीआर में आज कुछ बारिश हुई जिससे गर्मी और हब्स के बाद लोगों को राहत मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस एमके सेकंड के डिजाइन के मरहले को कामयाब के साथ मुकम्मल कर लिया करने पर कौमी एरोस्पेस लेबोरेटरीज को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब नायडू ने कहा कि सारस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से मुताबकत रखते हुए अंदरूनी मुल्क डिजाइन करदा मुल्क का पहला हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये घरेलू सतह पर तैयारे बनाने के इस संग मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवीत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ठह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सहपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाय हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गई। इब्तदाई मालूम के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में तामीर नौ का काम जारी था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमित कर दिए हैं। ये मामला गैर ईमानदाराना माली लेन देन और रुकूमात के मुश्तबा इस्तेमाल से मुतालिक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने से मुतालिक कानून 2002 के जाब्तों के तहत कल कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान एआईटीसी के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है,

0: कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं, और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहाँ जिस जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है। तो पूरे पैटर्न को, और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है, और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलिनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलिनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एलिनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ धन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है, खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा, जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां, मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो

0: पर पड़ी है, उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है। तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो हैं, फ्लड रिलेटेड जो हैं वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उस

0: कि कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी,
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव का संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी

0: तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे

0: सकता है, जिसे कहते हैं ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, व्हेन टू सो, When to harvest, when to irrigate, how much to irrigate, when to spray chemicals, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलके वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश

0: तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एल

0: चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी।

जब कोई गीत गूंजते हमारे कानों तक पहुंचता है तो एक पल के लिए हमारा ध्यान उस गीत की ओर चला जाता है। गीत कोई भी हो, वो तभी भाता है जब उस गीत का हर शब्द हर अंतरा से ऐसा अर्थ निकलकर आए कि लगे कि वो गीत मेरे लिए गाया जा रहा है। आदमी को विशेष रूप से वही गीत भाता है जो उसकी स्थिति परिस्थिति से मेल खाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी बात से उदास हैं, ऐसी स्थिति में कोई झमकदार गीत आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और जब आपको किसी बात की खुशी होगी, आपका मन उमंगों से भरा होगा, तो यही गीत आपको खूब भाएगा, आपको झुमाने लगेगा और आप पूरी मस्ती के साथ उस गीत को सुनने का आनंद लेंगे। नमस्कार, लोक माधुरी के साथ मैं गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का लोक गीतों के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। गीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारी भावनाओं से इसका गहरा संबंध होता है। हमारी जैसी स्थिति होती है, जैसा हम पर बीतता है, वैसा कोई गीत कहीं से गूंजते हमें सुनाई देता है तो उस गीत में हम डूब जाते हैं या फिर उस गीत को हम भी गुनगुनाने लगते हैं। आदमी के होठों पर वैसा ही गीत होता है जैसी उसकी मनोदशा होती है। गीत कोई भी हो, वो समय और परिस्थिति के अनुसार ही मन को भाता है। जैसे

सुबह के समय वंदना सुनना अच्छा लगता है। दिन के समय कोई ऐसा गीत जो उमंगों से भरा हो, और फिर रात के समय कोई ऐसा गीत जो आपके दिल को छू जाए और आप उस गीत में खो जाएं। बात गीत की है तो हम उस गीत की बात करते हैं जो मिट्टी से जुड़ा होता है, अपने क्षेत्र का होता है, अपनी संस्कृति का अभिन्न अंग होता है। वो है किसी भी क्षेत्र का लोकगीत। ये गीत अपनी मिट्टी से जुड़े होने के कारण, अपना क्षेत्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के होने के कारण ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर क्षेत्र के अपने अपने लोकगीत होते हैं जो उस क्षेत्र की एक विशेष पहचान होते हैं, और समय समय पर उस क्षेत्र की विभिन्न परंपराओं के निर्वहन में, विभिन्न उत्सवों के मनाने में गूंजते रहते हैं। बात मिथिला की करें तो यहाँ का लोकगीत यहाँ के जीवन से इस तरह जुड़ा है कि इस गीत के बिना यहाँ की हर रस्में, परंपराएं, उत्सव, उमंगे सब अधूरे लगते हैं। यहाँ ऐसी शायद ही कोई परंपरा हो, शायद ही ऐसा कोई अवसर हो जिसके गीत यहाँ नहीं गूंजते हों। जन्म से लेकर अंतिम विदाई तक, विभिन्न उत्सवों से लेकर विभिन्न मौसमों तक के गीत यहाँ भरे हुए हैं जो अपने अवसर के अनुसार गूंजते रहते हैं। जैसे प्रातः के समय प्रातः गीत, संध्या के समय सांझ गीत, जन्म के अवसर पर सोहर बधैया गीत, उपनयन के अवसर पर गाए जाने वाला उपनयन गीत, विवाह के अवसर पर इसके विभिन्न रस्मों के गीत, विदाई के समय गाए जाने वाला समदौन गीत और अंतिम विदाई पर गाए जाने वाला निर्गुण गीत, इसी तरह विभिन्न मौसम में गाए जाने वाले बसंत, फगुआ, चैतावर गीत, लोक पर्व छठ, सामा चकेवा और मधुश्रावणी आदि के अवसर पर गाए जाने वाला गीत, भक्ति भावना से भरा देवी गीत, नचारी और महेशवाणी गीत आदि अनेक लोकगीत यहाँ के वातावरण में अपने समय, अपने अवसर के अनुसार गूंजते रहे हैं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीतों की ओर। सावन का महीना किसान के लिए खुशियों से भरा महीना होता है। इस महीने में पूरे तन मन के साथ किसान अपनी खेतों में धान की बुआई करते हैं। धान की बुआई के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, और इस महीने की बारिश यानी सावन की बारिश धान की खेती के लिए अमृत के समान होती है। ये बारिश जब होती है तो किसान की खुशियाँ देखते ही बनती है। वे बिना समय बिताए चल देते हैं अपनी खेतों की ओर और दिन रात धान की बुआई करते रहते हैं। धान की बुआई करते वे इतने उमंगों से भरे होते हैं कि उनके चेहरे पर थकान का कोई भाव नहीं रहता, क्योंकि खेती से उनके परिवार के सपने पूरे होते हैं, सारी जरूरतें पूरी होती हैं। किसान के लिए खेत उनका ईश्वर है और खेती उनकी पूजा। किसान की इस पूजा का फल केवल उन्हें ही नहीं मिलता, हम सब उनकी इस पूजा के फल से लाभान्वित होते हैं। कोई भी फसल की खेती हो किसान के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो खेती धान की हो या मक्के की। हाँ, ये बात जरूर है कि धान की खेती विशेष महत्व रखती है, और ये खेती पूर्ण रूप से बारिश पर निर्भर करती है। तभी तो जब सावन की बारिश झमाझम बरसती है तो किसान खुशियों से झूम

बेटी को अपने ससुराल में चाहे जितना भी सुख क्यों न मिले, मैके की सुख की बात ही अलग होती है। मैके यानी अपने माता पिता का घर, अपना घर जहाँ वो पली बढ़ी, वो घर जहाँ किसी से कोई पर्दा नहीं होता, सब अपने होते हैं, सभी सखियाँ सहेलियाँ होती हैं जिनके साथ खेलते कूदते आनंद से समय बीतता है। मैके की जब कभी बात चलती है तो ससुराल में रह रही बेटी को अपने मैके की सभी बातें, वहाँ की सभी यादें किसी चलचित्र की तरह सामने आने लगती है। अपने बाबा की हवेली जहाँ स्वतंत्र होकर रहती थी, जहाँ शाम होते आसपास के चाचा लोग आते और आपस में खूब बातें करते, वो बाबा जो बहुत प्यार दिए, कभी डांटे नहीं, वो जन्म देने वाली माँ जो गुरु के समान थी, कभी किसी बात पर डांटती तो कभी प्यार से।

बिठाकर बालों की चोटी गुथते हमें कई बातें सिखाती। वो बड़े भैया जिनसे छुपके सखियों के संग खेलने जाती थी, वो पड़ोस की चाची जो हरदम माँ से मेरी शिकायत करती और डांट पड़ने पर मुझे आगे बढ़कर बचा भी लेती थी। मैके की ये सारी बातें जब बेटी को याद आती है तो उन्हें भावुक कर देती है।

ईश्वर के प्रति जब श्रद्धा भावना उमड़ने लगती है, जब मन में उनकी लगन लग जाती है, तो उनके दर्शन के लिए मन व्याकुल हो जाता है और

फिर ये व्याकुल मन अपनी प्यासी नैनों को तृप्त करने के लिए, अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए ईश्वर को हर जगह ढूंढते हैं। ईश्वर के लिए मन इतना बावरा हो जाता है कि हर बात में वे ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। पर सच तो ये है, जिन्हें ईश्वर के प्रति ऐसी लगन लग जाती है तो उन्हें ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के वे हमेशा साथ रहते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं।

0: ईश्वर के प्रति हमेशा आस्था रखनी चाहिए, हमेशा सत्कर्मों पर चलते रहना चाहिए, भूल से भी कोई भूल ना हो। अध्यात्म का मार्ग कभी छूटे नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो ऐसा करते हैं ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। जब संसार रूपी भवसागर में जीवन की नैया डगमगाने लगती है, जब इस भवसागर की लहरों से जीवन की इस नैया के डूबने की आशंका प्रबल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने कर्मों की याद आती है। कैसे हमसे ऐसी भूल हुई कि हम अध्यात्म को कभी नहीं माने, कैसे हमने भौतिकवादी जीवन के चक्कर में सत्कर्मों से मुंह मोड़ लिया। अपनी ये भूल ज्ञात होते ही पश्चाताप के आंसू छलक पड़ते हैं और फिर होंठों पे आती है ये गुहार।
1: हर हर हर बम बम हर हर।

इसके साथ ही लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों के गीतों को सुना उनके नाम हैं राजेंद्र ठाकुर, पूनम कुमारी, मीरा मिश्र व सहेली और विदुषी शारदा सिन्हा। आलेख और वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का था। प्रस्तुतकर्ता थे विनीत कुमार ठाकुर और संयोजक अमरनाथ प्रसाद। तो अब कार्यक्रम से मुझे यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव को दे अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी का ये अंक पूर्व प्रसारित था।

आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए फिल्मी गानों पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में सुन रहे थे आप पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम था प्रेम रोग। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म आरजू से। आशा भोसले और मुबारक बेगम की आवाज़ है। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत शंकर जयकिशन का।

गाइड फिल्म का ये गाना था जो आप सुन रहे थे, शैलेंद्र का लिखा ये गाना था और संगीत SD बर्मन का। अब जो गाना आप सुनेंगे वो कैफी आजमी ने लिखा है, मदन मोहन का संगीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, S बलबीर और साथियों की। फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

0: फिल्म हंसते जख्म के इस गाने के साथ ही आज का गीतों के रंग का कार्यक्रम समाप्त होता है। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए

ओपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल सुबह 5:45 पर हम अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।